मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इसमें प्रातः के 5:56 और 42 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आम की बागवानी विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज हम आम का बाग लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। समय चल रहा है, इसलिए अगर आप आम के पेड़ लगाना चाहते हैं तो लगाएं। इसके बगीचे के लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसमें अतिरिक्त जल के निकास की सुविधा हो सर्वोत्तम होती है। बाग लगाने से पहले खेत में जुताई करके खरपतवारों को सूखने दिया जाता है। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लेना चाहिए जिससे बरसात होने से पहले खरपतवार सूख जाएं। फिर पेड़ कितने दूरी पर लगाए जाएं, उनका रेखांकन किया जाता है। आजकल सामान्यतः वर्गाकार विधि से ही पेड़ों को लगाते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी जितनी होती है उतनी ही पेड़ से पेड़ की दूरी भी रखते हैं। रेखांकन करते समय यह बात ध्यान रहे कि मेड़ के किनारे की लाइन निर्धारित दूरी की आधी दूरी पर बनावें। आम्रपाली को छोड़कर सभी कलमी आम के पेड़ को 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। आम्रपाली के लिए यह दूरी 2.5 से 3 मीटर रखते हैं। अतः आम्रपाली के लिए मेड़ के किनारे की पहली लाइन 1.25 मीटर पर तथा अन्य लाइनें 2.5-2.5 मीटर पर बनाते हैं। बाकी जो प्रजातियां हैं उनके लिए मेड़ के किनारे की लाइन 5 मीटर पर बनेगी और बाकी सभी लाइनें 10-10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। रेखांकन कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गड्ढे की खुदाई करना। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय तो मई जून का महीना है। यह कार्य अगर कर लिए हैं तो ठीक है, इसमें भराई का कार्य करें, और यदि अगर खुदाई नहीं किए हैं तो इसमें खुदाई का कार्य करें। चूंकि सारे पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी सतह में ही होते हैं, अतः गड्ढा भरने के लिए ऊपर की आधी मिट्टी जो गड्ढा खोदते समय निकली रहती है उसे लेते हैं और उतनी ही मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद लेते हैं। दीमक के प्रकोप से कभी कभी पौधे को काफ़ी नुकसान होता है, अतः लगभग 100 ग्राम लिंडेन चूर्ण और लगभग 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ये सब मिला करके गड्ढे की भराई कर देते हैं। फिर इसमें पौधे को लगाया जाता है। पौधे लगाने का समय बरसात होने के बाद शुरू होता है, यानी जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक आप आम के पौधे को लगा सकते हैं। आम की कलम किसी विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए। प्रजाति देखने में स्वस्थ और लगभग 1 साल की होनी चाहिए। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसे भी जान लें। आम की कुछ किस्में अगेती होती हैं जो कि जल्दी पकती हैं, कुछ किस्में मध्यकालीन होती हैं और कुछ किस्में देर से पकती हैं जिन्हें हम पिछेती किस्में कहते हैं। आम की जो अगेती किस्में हैं उनमें प्रमुख हैं गौरजीत, रसौल और बम्बई हरा। आम की जो मध्यकालीन किस्में हैं वह हैं दशहरी, लंगड़ा,

0: लखनऊ सफेदा व आम्रपाली। जो किस्में देर से पकती हैं वह हैं चौसा, फजली और अचार के लिए उपयुक्त प्रजाति रामकेला। अगर आप आम का बगीचा लगा रहे हैं तो आपको इन सभी प्रकार में से प्रजातियों को चुनना चाहिए, जिससे पूरे सीजन भर आम की फलत मिलती रहे। आम का पौधा लगा देने के बाद फिर उसके देखभाल की आवश्यकता होती है। बरसात में पानी के निकास की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। खरपतवार निकालते रहें और गुड़ाई वगैरह भी करते रहना चाहिए। जब आम के पौधे एक वर्ष के हो जाएं तो उसमें अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर आम का बाग लगाना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आम की बागवानी विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे भगवान शिव के आराधना से। भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले सृष्टि में परमात्मा रूपी स्थित हैं, जो संसार को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सुंदर बनाते हैं। शिव सत्य और सुंदर को जोड़ने वाले सेतु हैं।

सृष्टि का सृजन पालन एवं दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा की असीम कृपा जिस पर हो जाती है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम सभी माँ के भक्तजन श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं।

सांसारिक मोह माया से विरत होकर भक्ति करना। इस संसार में परमात्मा का अस्तित्व है। जब हम समर्पित भक्ति भाव से उस परम शक्ति से जुड़ते हैं तो भक्त आनंदित होकर सुख का अनुभव करते हैं।

आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उदित नारायण, बाबला मेहता और ओम व्यास के गाए भजन। हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: आज के समय में दुनिया में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। दुनिया बहुत तीव्र गति से दौड़ती चली जा रही है। उसकी चाहत इस गति में किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहती, इसलिए सभी लोग इस दौड़ में सम्मिलित होते जा रहे हैं। आगे बढ़ने की होड़, अधिक पैसा कमाने की होड़, बहुत जल्दी बहुत पाने की तीव्र इच्छा और तेज गति से सब काम करने की चाहत ने आज व्यक्ति की जीवन शैली में बहुत व्यस्तता ला दी है। आज दुनिया में उन वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है जिनसे कम परिश्रम में तेज गति से काम किया जा सके, और उन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं रह गई है जिनसे काम करने में बहुत अधिक मेहनत और समय लगता है। तेज रफ्तार से इंटरनेट सर्फिंग की सुविधा आम तौर पर उपलब्ध है। आज पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने संदेश पहुंचाए जा सकते हैं और किसी से भी संपर्क साधा जा सकता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार की इस दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ावा हो रहा है, और ये भी सच है कि रफ्तार का यह आकर्षण न तो कभी खत्म होगा और न इससे और तेज रफ्तार की चाहत ही खत्म होगी। दरअसल तेजी से आगे बढ़ने की चाहत ने इंसान को हमेशा से रोमांचित किया है। इसी रोमांच के गर्भ से इंसान में उड़ने की इच्छा पैदा हुई और राइट बंधुओं का हवाई जहाज निकला, और बाद में इसी रफ्तार की चाहत ने सुपरसोनिक जैसे तेज रफ्तार के रोमांचक पर्याय माने जाने वाले विमान दिए। मनुष्य के जीवन में छाई रहने वाली ये रफ्तार केवल उड़ने दौड़ने यानी यातायात और परिवहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि रफ्तार हमारी हर गतिविधि का हिस्सा है। इतिहास का अवलोकन करने से ये भी पता चलता है कि इस रफ्तार में लगातार तेजी ही आई है और उसमें कभी कमी नहीं आई। फिर उसकी गतिविधि चाहे कुछ भी क्यों न हो, यहां तक कि 1000 साल पहले इंसान जितनी तेज गति से दौड़ता था, आज उसकी रफ्तार उस समय की तुलना में 100% से भी ज्यादा बढ़ गई है। तेज गति से दौड़ने की ये चाहत ओलंपिक खेलों में नजर आती है, क्योंकि आज से आधी शताब्दी पहले के लोग 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड से कम समय में पूरी करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, और आज ये दूरी इससे भी कम समय में पूरी की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि इंसान की तेज दौड़ने की रफ्तार 70% से 80% और बढ़ सकती है। हमारे यातायात के साधनों की आज जो रफ्तार है, उसकी कल्पना 200 साल पहले के लोग कर भी नहीं सकते थे। मानव जीवन में आने वाली ये रफ्तार बुरी नहीं है। ये रफ्तार कई तरह की उपलब्धियों की प्रतीक है। रफ्तार का अर्थ है विकास और तरक्की। इसका अर्थ है प्रतियोगिता, सक्रियता और उज्ज्वल भविष्य। ये रफ्तार इस दृष्टि से आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन करने का माध्यम है। तेज गति से दौड़ती इस दुनिया में रहने वाले लोगों ने जहां आधुनिक तकनीक की वजह से हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, वहीं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी गंवाया है।

0: तेजी से भागती हुई इस दुनिया को देखने पर कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती है कि दुनिया किस दिशा की तरफ जा रही है, दुनिया के लोग क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद से दूर होते जा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आज की दुनिया में दिल के रिश्ते सच्चे दिखते प्रतीत नहीं होते। कहीं किसी पर भरोसा करने में संदेह होता है, दूसरों पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को यदि कुछ तलाशना चाहिए तो अपने आप को। व्यक्ति यदि स्वयं को समझ सकेगा, अपनी आंतरिक शक्तियों को जान सकेगा, उनका सदुपयोग कर सकेगा और अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर पाएगा, तो इतना कुछ हासिल कर सकेगा जिसके समक्ष वर्तमान या भविष्य में होने वाली प्रगति भी उसे महत्वहीन लगेगी और वो जीवन की सच्ची सुख, शांति, समृद्धि और प्रसन्नता का हकदार हो जाएगा।
1: ये था आज का विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं, विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां, कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर राहुल कुमार सिंह से ये जानकारी।
2: मैं डॉक्टर राहुल सिंह, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, आज आपके साथ विटामिन्स के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ। इसमें विटामिन बी के कुछ विटामिन्स की बात हो रही है। B12 एक विटामिन है जो कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर हो गया तो हमारे बहुत से शरीर के फंक्शन, जिसमें ब्रेन की एबिलिटी, याददाश्त की क्षमता के साथ साथ पहचानने की बीमारी, कोई लकवा ग्रस्त हो जाता है, वो भी विटामिन B12 की कमी के बाद की स्थिति आ सकती है। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो कि वेज डाइट्स में सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है और नॉन वेज डाइट्स में बहुतायत होता है। B12 नॉन वेज में होता है। जो व्यक्ति शाकाहारी हैं, उनको B12 की अक्सर कमी हो जाया करती, और ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति, नर्वस सिस्टम, फिजिकल एक्टिविटी सभी बाधित हो जाती है। नॉन वेज में जैसे एग है, ये इसका सबसे अच्छा सोर्स है, और भी जो नॉन वेज डाइट्स लेते हैं लोग, उसमें B12 की मात्रा ज्यादा होती है। B12 का एब्जॉर्प्शन जो वेज डाइट है उसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर से होता है, तो वेज डाइट वालों को ये B12 की कमी अक्सर हो जाती है। लोग जांच कराते हैं, घबराते हैं, अरे B12 कम हो गया, हमें ऐसा क्यों हो रहा है, याद नहीं आता, कोई चीज भूल जाती है, चाबी यहाँ रखे वहाँ भूल गए, कोई काम करने की इच्छा नहीं हुई। तो हम लोग नॉन वेज जो नहीं खाने वाले हैं, उनको ये नहीं कहते कि आप नॉन वेज खा लें, डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हैं। पनीर में ये पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, तो होता है कि भाई आप 50 ग्राम पनीर एक दिन छोड़ के एक दिन कैसे भी खाइए, धीरे धीरे B12 आपका इंक्रीज करेगा। इसकी बहुत सी अच्छी दवाएं भी आती हैं, उन दवाओं को नियमित सेवन करें, और अगर इंटेंसिव फैक्टर वीक हो गया, दवा खाने के बाद भी B12 का एब्जॉर्प्शन हमारा नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन से, तो हम लोग इंट्रामस्कुलर B12 के इंजेक्शन बताते हैं, लोग B12 के इंजेक्शन लगवाते हैं और B12 नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद विटामिन सी आता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, एक रोग होता है जिसमें मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े फूल जाते हैं। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट, चाहे नींबू हो, खट्टा आंवला हो या फिर संतरा हो, खट्टे फलों में विटामिन सी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। एक नींबू का सेवन करें, जिनके गम्स में स्वेलिंग हो जाए, नींबू का सेवन करें और माउथ की प्रॉपर हाइजीन रखें। जब भी कुछ खाएं, मुंह को अच्छे से साफ कर लें, क्लीनिंग कर लें, चाय पिए तब भी मुंह की सफाई रखें, और विटामिन सी का सेवन करें। विटामिन सी से बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, शरीर से रोग से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। तो विटामिन सी एक बहुत ही जरूरी तत्व है जो हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो खट्टे फलों का सेवन आप करते रहेंगे, विटामिन सी नहीं होगा। फिर विटामिन डी है। विटामिन डी आप जानते हैं बोन्स के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है। लोग कहते हैं एक गिलास दूध और 15 मिनट की धूप, धूप से ही विटामिन डी एक्टिवेट होता है। जो लोग धूप में नहीं निकलते, कितना भी दूध पियेंगे विटामिन डी पूरा नहीं होगा। तो धूप में आधा घंटा बैठे और एक गिलास दूध पिए तो डी की कमी नहीं होने पाएगी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, तो वो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, चलने में दिक्कत होगी, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज जो महिलाओं की होती है उसमें भी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस।

0: विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसको हमको विशेष ध्यान देना है।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां, कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर राहुल कुमार सिंह से ये जानकारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। आज की गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर सिद्धराम स्वामी कोरवार का गायन और दिन में 12:45 पर सिद्धार्थ बनर्जी का गिटार वादन सुनिएगा।

गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार आप सुनिएगा सुबह 10 बजे, और फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत आप सुनिए दिन में 11 बजे। दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे ज्योति यादव के गाए गीत और भजन।

दिन में 1:15 बजे महिलाएं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में सुनेंगी बातचीत। उपभोक्ता अधिकार, जागरूक बने सुरक्षित रहें। साथ ही सुनिएगा गीत संगीत। शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात। उज्ज्वला यादव की वार्ता होगी, ग्रामीण भारत के विकास में युवाओं की भूमिका। यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत।

की फसल में खरपतवार प्रबंधन विषय पर सुनेंगे। डॉक्टर देव नारायण यादव की बातचीत साथी होगा हंसराज प्रसाद और साथी का गाया लोकगीत। हंसराज प्रसाद और साथी के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा।

0: आपको एक बार फिर से बता दें, रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर सिद्धराम स्वामी कोरवार का गायन और दिन में 12:45 पर सिद्धार्थ बनर्जी का गिटार वादन सुनिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्यारभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति। 25 दिनानां सत्रेऽस्मिन् 21 उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रिय सम्मानस्य अपमान निवारणस्य संशोधन विधेयकं 20-26 उपस्थाप्येते। सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकं, आयकर संशोधन विधेयकं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयकं 20-26 चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेऽस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्व संध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसद भवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः आसीत्। अस्यां सभायां 40 राजनैतिक दलानां 50-tops नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुख विषयेषु रचनात्मक चर्चासु भागग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं कृतवन्तः। श्री बिरला वर्यः रचनात्मक विचार विमर्शाणां सार्थक सहभागित्वस्य सर्वोच्च संसदीय परम्पराणां पालनस्य च महत्वमपि अधोरेखितवान्। दिल्ल्यारक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् अद्य आरभ्यमाणस्य संसद सत्रस्य दृष्ट्या नवदिल्लीमण्डले कस्यापि विरोधयात्रायाः प्रदर्शनस्य च अनुमतिः न प्राप्तास्ति न प्रदत्तास्ति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले दलेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 धारा 63-ए अनुवर्तितास्ति, अतः जंतर मंतर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5 अधिकानां जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्ति इति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम

0: बाबू।
1: जी हाँ, आपके अपने बनारसी बाबू के साथ तो आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार।

बनारस, उगते सूर्य की सुनहरी किरणें, मंद मंद बहती हवा, पक्षियों का मधुर कलरव और प्रकृति का ये अनुपम सौंदर्य मानो हमें एक ही संदेश दे रहे हैं कि संसार वास्तव में वैसा नहीं है जैसा वह दिखाई देता है, बल्कि वैसा है जैसी हमारी दृष्टि होती है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में एक सूत्र दिया गया है। कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें यह सृष्टि दिखाई देती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो कठिन परिस्थितियों में भी संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन यदि मन निराशा और नकारात्मकता से भरा हो तो सुख सुविधाओं के बीच भी अभाव ही दिखाई देता है। दरअसल हमारे भारतीय दर्शन में मन और दृष्टि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बाहरी संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि को बदलना जरूरी है। जब आपका मन निर्मल होता है तब संसार भी सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ हमें संत कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा याद आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। यानी वे कहते हैं कि दोष संसार में कम और हमारी दृष्टि में अधिक होते हैं, और जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तब दुनिया भी बदलती हुई प्रतीत होती है। तो वास्तव में एक ही घटना को दो व्यक्ति दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। किसी यात्री के लिए बारिश परेशानी हो सकती है तो किसी किसान के लिए वही बारिश जीवन का उत्सव बन जाती है, तो वही एक बच्चा उसमें खेलने लग जाता है। अब सोचने की बात यह है कि बारिश तो एक ही है, लेकिन नजरिया बदलने से परिणाम बदल गए। किसी ने क्या खूब कहा है कि नजरें बदली तो नजारे बदले, कश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। किसी के लिए चुनौती एक बाधा है तो किसी के लिए वही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए कहा गया है कि परिस्थितियां नहीं, नजरिया हमारा भविष्य तय करता है। रहीम दास जी भी इस बात के महत्व को कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी का मतलब बस जल नहीं है, बल्कि मर्यादा, विनम्रता और मानवीय दृष्टि का प्रतीक है ये पानी। जिस व्यक्ति की दृष्टि में

संवेदनशीलता और दूसरों के लिए सम्मान है वही जीवन के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि हम हर दिन कुछ पल खुद के भीतर झांकें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और दूसरों के लिए अपने मन में सद्भाव रखें, तो इससे न सिर्फ हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, बल्कि हमारा परिवार, हमारा समाज और पूरा वातावरण भी अधिक सुंदर बन जाएगा। तो आइए आज इस नए दिन की, नए सप्ताह की शुरुआत एक छोटे से संकल्प के साथ करें कि हम अपने दृष्टि को सकारात्मक, संवेदनशील और आशावादी बनाएंगे, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तभी सृष्टि बदलती है। इसी सुंदर भावना के साथ आज की ये सुबह आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई आशा लेकर आए, और बाबा विश्वनाथ की कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहेगी।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और बनारस हम बातें कर रहे हैं सकारात्मक नजरिए की। आपका नजरिया कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, कितना बड़ा काम कर सकता है, ये हमें देखने को मिला गत 18 जुलाई को, जब श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आगमन मिशन के तहत विक्रम 1 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इसी के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा ऐसा राष्ट्र बन गया जिसके पास किसी प्राइवेट कंपनी की बनाई ऑर्बिटल क्लास रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचाने की क्षमता है। और ये कारनामा कर दिखाया पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका नाम के दो युवा वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अपने लक्ष्य और अपने सपनों को उड़ान दी। यहाँ बनारस फिर वही बात आ जाती है कि आप ग्लास में पानी को आधा भरा देखते हैं या खाली। और इस विषय पर विशेष वक्तव्य के साथ इस वक्त हमसे जुड़ रही हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सिका डॉक्टर उपासना राय, जो वर्तमान में श्री शिव प्रसाद गुप्त जिला चिकित्सालय में कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रही हैं।
1: आकाशवाणी के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जीवन में पॉजिटिविटी का महत्व केवल एक प्रेरणादायक विचार नहीं बल्कि मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ तथ्य है। हम अक्सर सुनते हैं कि एक ही गिलास को कोई आधा भरा हुआ देखता है और कोई आधा खाली। गिलास तो वही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग है। यही नजरिया हमारे विचारों, भावनाओं, निर्णयों और अंततः हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मेडिकल रिसर्च बताती है कि जो लोग अधिक आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनमें तनाव का स्तर कम होता है। इसके विपरीत यदि हम हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक पहलू ही देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क धीरे धीरे उसी दिशा में सोचने का आदी हो जाता है। इससे चिंता, अवसाद, निराशा और तनाव बढ़ने का जोखिम भी बढ़ जाता है। तनाव में रहने से या नकारात्मक सोचने से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन

0: जैसे कि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ रहता है और इससे आगे चल के हृदय के रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नींद की समस्या भी शुरू हो जाती है। मतलब यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि पॉजिटिविटी का महत्व समस्याओं को नजरअंदाज करना या हमेशा खुश रहने का दिखावा करना नहीं है। वास्तविक पॉजिटिविटी का अर्थ है कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी समाधान खोजने की कोशिश करना, उम्मीद बनाए रखना और परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ना। इसलिए यदि हम अपने विचारों को थोड़ा सकारात्मक, संतुलित और समाधान केंद्रित बनाना सीख लें, तो इसका असर केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, कार्य करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता पर भी दिखाई देता है। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया काफी हद तक हमारे हाथ में होता है और कई बार यही नजरिया हमारी जिंदगी की दशा बदल देता है। तो आज से हम कोशिश करते हैं कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो चीजों में पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश करें। हमारे दिन में क्या क्या अच्छा चीजें हुआ, आज हम समय से उठे, समय से ऑफिस जा सके, ट्रैफिक कम था, काम अच्छे से हुआ, हमारे साथ के लोगों ने हमारी तारीफ की, हमने किसी की मदद की, हमारे वजह से कोई मुस्कुराया, हम समय से घर आ पाए, हम घर में घुसे तो हमारे बच्चे ने दौड़ के हमारे हमें गले से लगा लिया। ऐसी छोटी छोटी खुशियां खोजा जाए तो रात में देखिए कितनी सुकून की, कितनी अच्छी नींद आती है। और अगर इसका विपरीत हम करें, 10 चीजें दिन में अच्छी हुई हो लेकिन हमारा ध्यान उन 2 चीजों पे है जो हमारे मुताबिक नहीं हुआ, तो हमारा मन खराब सा हो जाता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि आज से चीजों में पॉजिटिविटी खोजा जाए और मन को खुश रखा जाए। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उपासना राय को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आइए बनारस अब कर लेते हैं बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। तो स्पेन और अर्जेंटीना के बीच न्यू जर्सी स्टेडियम में हुए फीफा विश्व कप 2026 फाइनल के अतिरिक्त समय में आखिरकार स्पेन की टीम अर्जेंटीना का जाल तोड़ने में सफल हुई, जब फॉरवर्ड फेरॉन तोरेस ने मैच के 106वें मिनट में गोल दाग स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई और अंत तक एक्स्ट्रा टाइम पूरा होने तक इसको बरकरार रखते हुए फीफा विश्व 2026 जीत लिया और इसी के साथ अर्जेंटीना का विश्व विजेता बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। इससे पहले मैच के निर्धारित 90 मिनट गोल रहित रहे थे। मैच से पहले बहुत तो मजबूत बताई गई स्पेन की टीम पहले हाफ में अर्जेंटीना के हौसलों और उनके गोलकीपर एमेलियानो मार्टिनेज से पार नहीं पा सकी और गोल करने में नाकाम रही। बनारस आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में नो एंट्री के समय बड़े वाहन किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें हाईवे और रिंग रोड पर ही सख्ती से रोका जाएगा। कॉलोनियों समेत अन्य मार्गों से शहर के अंदर आने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा, साथ ही ऐसे मार्गों को चिन्हित किया जाएगा जहां से कोई वाहन प्रवेश करते हैं। वही वाहन शहर के अंदर आएंगे जिनके पास जारी होंगे, उन्हें रात में बड़े वाहन लाने और नो एंट्री से पहले शहर से बाहर निकलना होगा। बनारस पहाड़ों पर हो रही बारिश का प्रभाव अब गंगा जी में साफ दिखने लगा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से घाटों पर जलकुंभी किनारों पर आकर लग गई है। बीते 26 घंटों में 27 सेंटीमीटर बढ़ी गंगा जी अब प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की गति से बढ़ने लगी हैं। और इसी क्रम में आषाढ़ी बादलों से आसमान घिरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भारी वर्षा के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। हालांकि रविवार को पूरे दिन में 1-2 बार हल्की फुहारों ने महज 1 मिमी पानी बरसाया। हालांकि मौसम विभाग आज के लिए एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन 1-2 बार बूंदाबांदी के सिवा अभी बारिश की संभावना नहीं है। और वहीं रथ यात्रा समापन के बाद असी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में रविवार सुबह प्रभु श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का आगमन हो गया और इस दौरान भक्त उनका दर्शन कर आनंदित हुए। तो ये था अपने शहर बनारस का हालचाल और अब आइए कर लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस वर्ष 1997 में आज ही के दिन तिस्ता नदी बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ था।

0: आज है जन्मदिन हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली विकलांग पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा का। साथ ही साथ आज है पुण्यतिथि सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, पार्श्व गायिका गीता दत्त, साहित्यकार बाल कृष्ण भट्ट और भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की। और अब इसी के साथ बनारस आई चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, बनारस काशी कथा। बनारस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना शहर कभी सड़कों का शहर नहीं था, बल्कि ये गलियों का शहर था और घाट किनारे बसा शहर गलियों के रूप में ही जाना और माना जाता था। जब अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर आकर व्यापार करना शुरू किया तो कच्ची सड़क पर उनका टमटम बैठ जाया करता था। इसकी वजह से इंग्लिशिया लाइन, जो वर्तमान में कैंट के पास है, वहाँ से लेकर के गिरजाघर चौराहे तक उन लोगों ने एक पक्की सड़क का निर्माण कराया जिसे नई सड़क कहा जाता है। इससे पहले तो बनारस गलियों के लिए ही मशहूर था और आज भी बनारस में गलियाँ अद्भुत रूप में मौजूद हैं। इन गलियों के सिर्फ नाम की ऐतिहासिकता ही नहीं है बल्कि पुराणों में भी इनका वर्णन है, क्योंकि पुराणों के हिसाब से बनारस में गलियों को नाभि तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी नाड़ियां मानव के शरीर में होती हैं उतनी ही बनारस शहर में गलियां हैं। तो बनारस की ब्रह्मनाल गली भगवान शिव का नाभि क्षेत्र मानी जाती है और मध्यमेश्वर भगवान शिव का मध्य हिस्सा माना जाता है। इसलिए यहाँ की गलियाँ सिर्फ परंपरा और इतिहास से ही नहीं बल्कि धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। और आज काशी कथा में हम ऐसे ही दो बेहद प्राचीन गलियों के बारे में बातें करेंगे, जिनमें से पहली गली का नाम है लट्टू गली या गणेश गली। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम है लट्टू गली। मान्यताओं के अनुसार इस गली में रंग बिरंगे लट्टू बना और बिका करते थे, जिन्हें बच्चे एक रस्सी की सहायता से नचाया करते थे। ये लट्टू काशी की विशिष्ट पारंपरिक कला का हिस्सा थे। बाबा काल भैरव के पीछे वाले रास्ते से बीबी हटिया होते हुए जब आप रतन फाटक की ओर बढ़ते हैं, तब काशी विद्या मंदिर के ठीक सामने वाली गली है ये, जिसके अंत में गणेश जी का एक भव्य मंदिर भी है, जिसके कारण इसे गणेश गली भी कहा जाता है। इसी गली से जब आप थोड़ा और आगे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो गणेश विद्या मंदिर से कपिलेश्वर गली के नुक्कड़ तक के क्षेत्र को भट्ट कचहरी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, बनारस भट्ट कचहरी। और ऐसा इसका नाम इसलिए पड़ा, इसकी ये विशेषता थी कि इस गली के दोनों ओर बड़े बड़े विद्वान बैठकर वैदिक और पौराणिक चर्चाएं किया करते थे और कई बार चर्चा करते करते उनमें शास्त्रार्थ भी होने लगता था, इसलिए इसका नाम भट्ट कचहरी पड़ गया था। हालांकि अब ये परंपरा विलुप्त हो चुकी है, लेकिन एक समय था जब ये गली दिन रात इस तरह के वैदिक और पौराणिक मंत्रों और पाठों से गूंजती रहती थी। तो बनारस, ये था काशी कथा का आज का अंक, और आगे के अंकों में भी हम आपको कुछ और ऐसे ही अद्भुत गलियों की कथा सुनाते रहेंगे।
1: काशी कथा।
0: और बनारस, अब इसी के साथ दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकर

0: तैयार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाए गए प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक ये विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार है।
3: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुआ है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
2: इस अवसर पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, ये 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
4: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।

0: मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को कल प्रशासक बना दिया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।
2: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव DM के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का कल लखनऊ में समापन हो गया।
3: शिविर के समापन अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खड़से ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। यह शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने तथा नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए कल सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र में गजरौला मार्ग पर कल शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ओवरटेकिंग के दौरान बाइक सवारों और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। हमारे अमरोहा प्रतिनिधि ने बताया कि टक्कर के बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में पलट गया, जिसमें कैंटर सवार 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में कल रात मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों तथा तराई क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड में बारिश का ये क्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा।
4: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है। जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा

0: की भी संभावना है।
1: इस बीच जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा कल से रोक दी गई। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन अगले माह 28 अगस्त को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया

गया। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक, पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सिद्धराम स्वामी कोरवार का गायन। राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित नंदकिशोर मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सिद्धराम स्वामी कोरवार का गायन। राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित नंदकिशोर मिश्रा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
4: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
5: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह

0: निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है।

0: बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने नवी रात भी ईरान पर

0: आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
1: हैप्पी बर्थडे माय डियर।
2: अरे ये क्या
3: एब्सोल्यूट?
4: मेरी नई स्कूटी के लिए।
3: वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
4: मतलब
3: सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या जान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
4: दादू बन गई सयानी,
5: गिफ्ट नहीं खोलेंगे
6: स्कूटी।
3: RBI कहता है इनसे सुनिए,
7: जानकार बनिए,
5: सतर्क रहिए।
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
8: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
8: बुकिंग है तो संपर्क करें
10: 0542227658,
11: 0542227658।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में स्वागत है। इस कार्यक्रम को सुनने वालों को ज्योति स्वरूप का नमस्कार।

उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, हवा है ठंडी ठंडी गुनगुनाती पुरवैया, और मौसम भी है प्यारा प्यारा। सुहाने मौसम में चांद छुप गया बादलों में और छुप गया हर तारा। हवा है ठंडी ठंडी गुनगुनाती हवाएं, मौसम हो गया सुहाना सुहाना।

मौसम की ये काली काली घटाएं, आसमां से बरसे पानी, जीलू मैं इसे भागे रे मन मेरा, इस सुहानी समा में बारिश में भीगा भीगा हर लम्हा, मौसम का ये फसाना, मौसम भीगा भीगा, मन चला जाने किधर, जानू ना जानू ना।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे कार्यक्रम मधुरिमा। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये भीगने की ख्वाहिशें, मिलने की पुरानी ख्वाहिश, हो पूरी तुझी से हमारी ये कहानी।

प्यार के एहसास, उमंग से भरी भावनाएं, ये सुहाना मौसम। मन में प्यार के सपने सवरने लगते हैं, मौसम की खुशबू बिखरने लगती है। सनसनाती गुनगुनाती हवाओं ने दिल की बात सुन ली ही। प्यार के इकरार के साथ साथ सुहाना मौसम, ये मन गुनगुनाने लगता है। हवा गुनगुनाने और लहराने लगती है, खुशी में दिल झूमने लगता है।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: गत दिनों चंदौली के राजकीय आईटीआई कॉलेज रेवसा में भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के स्टार्टअप पहल के अंतर्गत एक दिवसीय स्टार्टअप कार्यशाला तेजस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इन्वेस्टमेंट यूपी, स्टार्टअप इन यूपी, अटल इनक्यूबेशन सेंटर BHU और जिला प्रशासन चंदौली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ बतौर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के चित्र माल्यार्पण कर किया। जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जनपद में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। कार्यशाला में स्टार्टअप इन यूपी की ओर से आए प्रशांत रंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप नीतियों पर विस्तृत चर्चा की और युवाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। विगत दिनों चंदौली दौरे पर आए सूबे के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 3,55,00,000 की लागत से नव निर्मित उप निबंधक एवं AIG निबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। इस नए और अत्याधुनिक सुविधा युक्त कार्यालय भवन के बन जाने से अब आम जनता को रजिस्ट्री और स्टाम्प संबंधी कार्यों में बड़ी सहूलियत मिलेगी। गत दिनों चंदौली में पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर स्थित महिला उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण अध्यक्षा चित्रा सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरत पर सेनेटरी नैपकिन की सहज उपलब्धता के लिए सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। विगत दिनों चंदौली में सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं आयोजन विभाग अनिल राजभर ने चकिया के जलेबिया मोड़ के पास वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने जनपद वासियों से इस महत्वपूर्ण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री ने पौधरोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। उन्होंने पीपल, पाकड़ और बरगद के 3 पौधे का एक साथ रोपण कर इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केवल पौध लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका संरक्षण करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद व भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत चंदौली के नियंताबाद में स्थित तालाब पर पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। वन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने आम अमरूद का पेड़ लगाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभी कर्मचारियों व आमजन से प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर वृहद वृक्षारोपण कराने के निर्देश अधिकारियों के दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष उससे अधिक पौधों को लगाया गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। चंदौली में उर्वरक की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया में आ रहे मामले पर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में उर्वरक का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि
2: एक एक किसान को उनकी जमीन के आकार पर जरूरत वही के आधार पर खाद उपलब्धता कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम उपलब्ध कराएंगे। और सभी किसान भाइयों से और रिटेलर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि वो निर्धारित दर पे ही उर्वरक की बिक्री करें और अपने अभिलेखों पे उसका जो है अंकित करें, और जिस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल को अपने अभिलेख पे अंकित करें। इस एक सीजन के लिए 1 हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP एक किसान के लिए अनुमन्य है। इसलिए कोई भी किसान भाई किसी भी भ्रम में न रहे, जनपद में पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसको बराबर निगरानी बनाए हुए हैं।
1: उन्होंने किसानों से अपील की कि जैव विविधता व मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरित खाद का अपने खेतों में इस्तेमाल करें।
0: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का।
3: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

0: तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं छात्रों के बेहतर शैक्षणिक विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद के राजकीय इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों के सीखने की क्षमता, विषयों की समझ एवं परीक्षा परिणामों में निरंतर सुधार सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जनपद की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में जनपद में औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं के समाधान तथा निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी। जनपद मुख्यालय के आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर का 155वां स्थापना दिवस समारोह एमएलके पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक, साहित्य, सामाजिक, सरोकार एवं प्रतिभा सम्मान से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से 1 जुलाई को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय परिसर से जन जागरूकता वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जिले में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दुसाह में जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना एवं ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। जनपद में पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण विस्तार एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग द्वारा बृहद वृक्षारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश उठो बढ़ो, हाथ मिलाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ तथा एक पेड़ माँ के नाम रहा। जिले में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बलरामपुर द्वारा 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर आधारित 3 दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सदर विधायक पलटू राम ने किया। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
1: सामाजिक सुरक्षा कवच, ये सीधे सीधे हम किसानों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से कवर्ड करके उनके सीधे सीधे परिवार को लाभ दिलाने की योजना है। बहुत कम प्रीमियम में हम किसान परिवार को लाभान्वित करने का काम करते हैं।
0: जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में वायलेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे विकास खंडों के चयनित 44 ग्रामों के समग्र एवं सतत विकास से जिला स्तरीय समिति की बैठक कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में इन ग्रामों को विभिन्न विकास मानकों पर आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित 10 प्रमुख इंटरवेंशन क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। जिले में संभावित बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से जनसामान्य को सुरक्षित रखने तथा राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन, अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बाढ़ के दृष्टिगत तहसील बलरामपुर सदर में संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ खंड सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने बताया कि
2: हमारे यहाँ टोटल 19 कार्ड्स बन वाले हैं और 32 कार्ड चौकी है। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी है 1077। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता किसी भी समय, न सिर्फ बाढ़ के टाइम में, अन्यथा किसी भी स्तर पे अगर उनको आवश्यकता महसूस होती है आपदा से संभावित, तो वो इस पर सीधे बात कर सकते हैं और वो हम तक पहुँचेगी। हम शीघ्र ही उनका सहायता।
0: जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख चौराहों पर विशेष जन जागरूकता एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वीर विनय चौक, बलरामपुर सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर वाहन चालकों एवं आम जन को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, पिता का नाम लक्ष्मण प्रसाद, निवासी हैं ग्राम चेतन किशोर पोस्ट सिकंदरपुर, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया की। ये दिनांक 26 नवंबर 2025 को घर से 2 बजे निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। इनकी लंबाई 5 फीट है, इनका रंग सांवला है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार संध्या पुत्री कालीचरण, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, ये 2 जून 2026 को सुबह 10 बजे राजदीप महिला पीजी कॉलेज कैलहट चुनार मिर्जापुर परीक्षा देने गई थी, तभी से लापता हैं। इनकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है, रंग गोरा है। लापता होने के समय इन्होंने ग्रीन कलर का सूट सलवार पहने हुई थी। ये निवासिनी हैं ग्राम व पोस्ट रैपुरवा, तहसील व थाना चुनार, जिला मिर्जापुर की। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया सूचित करें थाना चुनार को या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मिर्जापुर से ही प्राप्त सूचना के अनुसार दीपक, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, पुत्र रामधनी, निवासी राहकला पोस्ट सिरसी, थाना संत नगर, जिला मिर्जापुर, ये दिनांक 26 मई 2026 को सुबह 9 बजे अपने घर से मड़िहान के लिए घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इनकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है, रंग सांवला है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना संत नगर या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: खुलते हैं और अदब की खुशबू नई नस्ल के एहसास व फिक्र को फ़रोग देती है। आइए चलते हैं शोबे उर्दू के उस इल्मी व अदबी सफ़र की जानिब और जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या क्या सरगर्मियाँ रहीं। तो बिला ताखीर चलिए सीधा पहुँचते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की दहलीज पर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी के HOD सीनियर प्रोफेसर जनाब अब्बास रजा नैयर साहब।
1: सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उर्दू जबान के फरोग में आज के नौजवान किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
2: बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो नौजवान नस्ल का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप नौजवान नस्ल की तर्जमानी करती हैं और आपका सवाल भी नौजवानों के लिए है। मुझे अपनी गज़ल का एक मतला याद आ रहा है कि इनकी राहों में मोहब्बत के उजाले कर दो, इनकी राहों में मोहब्बत के उजाले कर दो, गुलसिता अब नई नस्लों के हवाले कर दो। तो हमें अपनी नई नस्लों का इस्तकबाल करना चाहिए, नए रास्ते उनके लिए बनाने चाहिए, नई आवाज़ें, नए चराग, नए चांद, नए सूरज, नए जुगनू, नए सितारों का हम इस्तकबाल करते हैं। नई नस्ल जो है वो ज़माने के तकाज़ों के तहत बहुत बाशऊर है और वो इमोशनल भी है और रेशनल भी है, यानी इमोशंस विद इंटेलेक्ट, दानिश्वरी भी उसके अंदर मौजूद है। इसलिए वो अपने मकसद को ज़्यादा सामने रखती है, अपने जो उसलूब है और जो आहंग है उसको भी तरजीह देती है, मगर उतना नहीं। मसलन जो मुश्किलें हमारे यहाँ संस्कृत के साथ हुई कि इस कदर उसको दुश्वार बना दिया गया कि हमारी समझ से वो ज़बान आगे चली गई। तो दानिश्वरी की ज़बान है, बहुत रिच ज़बान है, इसी तरह से अरबी बहुत रिच ज़बान है, लेकिन फारसी जिस तरीके से मकबूल हुई थी वो अपनी शीरीनी, अपनी सलासत, अपनी रवानी और अपनी मिठास की वजह से। तो उर्दू की भी ये खूबी है कि उर्दू किसी भी ज़बान के लफ्ज़ों को अपने दामन में समेटने की ज़्यादा सलाहियत रखती है और किसी भी ज़बान में ज़म हो जाने की भी ज़्यादा सलाहियत रखती है, यानी उर्दू का दामन भी बहुत बड़ा है और उर्दू का दिल भी बहुत बड़ा है। तो किसी भी ज़बान के लफ्ज़ों को जिस तरह से ये ले सकती है और एक मोम की तरह पिघल के किसी भी ज़बान के दामन में जैसे अपनी जगह बना सकती है, दूसरी ज़बानें नहीं हैं। मसलन अंग्रेज़ी में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो अरबी वाले नहीं भूल सकते, मसलन इंडिया डाल की आवाज़ है। तो इसी तरीके से अरबी में बहुत सारी आवाज़ें हैं जो अंग्रेज़ी में वाज़े नहीं हो सकती हैं, मसलन वाद, वोए और ज़े की मुख्तलिफ आवाज़ें। और इसी तरीके से अरबी वाले बहुत सा तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, मसलन डाल का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, अंग्रेज़ी वाले बहुत से अरबी का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, बहुत से संस्कृत का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, लेकिन उर्दू वाले के यहाँ ये सलाहियत मौजूद है कि वो हिंदुस्तान भी बोल सकता है, इंडिया भी बोल सकता है, भारत भी बोल सकता है, वाद भी बोल सकता है, फाद भी बोल सकता है, किसी भी लहजे में, किसी भी आवाज़ में वो गुफ्तगू कर सकता है। उसी के साथ उर्दू इतनी दुश्वार भी नहीं है, इतनी सख्त भी नहीं है कि वो अपने लफ्ज़ को, जब तक कि हम मौलवी अब्दुल कुद्दूस का जो है वो माजून ना बनाए, ये उर्दू इस मिजाज को नहीं बर्दाश्त करती। काफ है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो उर्दू एक आहंग के साथ चलती है, अभी की तरह से नहीं है। तो उसके यहाँ तलफ़ुज़ साफ हो लेकिन इस कदर रवा दवा हो, जैसे लखनऊ का जो तलफ़ुज़ होता है कि जो मसलन लखनऊ में बेगमात आप एक खातून हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक़्त जैसे कहती हैं। तो क्यों वक़्त कहती हैं? कि चूंकि वक्त में काफ भी साकिन है, ते भी साकिन है, तो दो साकिन एक साथ, या दरख्त दाल में भी ज़बर है, रे पे भी ज़बर है, खे भी साकिन है, ते भी साकिन है, तो वो एक हर्फ को यानी कि एराब के साथ और एक हर्फ को साकिन कर लेती हैं यहाँ की औरतें, दरख्त बोल देती हैं, ये बोलने में आसान हो जाता है। तो आम आदमी सोचेगा ये तलफ़ुज़ गलत हो रहा है, लेकिन ये उर्दू का एक लहजा है, बेगमती लहजा है, अवधी लहजा है। तो बहुत आसान लहजे में, बहुत आसान ज़बान में, बहुत आसान उसलूब में आज की नस्ल बात करना चाहती है, जिससे बात जो है वो पहुंच जाए। राबिते की ज़बान, बाजार की ज़बान, अवाम की ज़बान, खवास का अपना एक लहजा है लेकिन वो ज़बान तरक्की करती है जो अवाम तक पहुंचती है। इसीलिए जिस ज़माने में हम अदब आलिया में दरबार आलिया की बात करते थे, उसी ज़माने में नज़ीर अकबर आबादी बाज़ार की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, मेले ठेलों की बातें करते थे, ईद और होली की बात करते थे, शबरात और दिवाली की बात करते थे। इसीलिए उनके यहाँ जो रीच, बंदर, भालू जैसे अल्फाज आते हैं उससे वो मुकम्मल हिंदुस्तान हमारे यहाँ, वो जो हज़रत अमीर खुसरो से चला था, नज़ीर अकबर आबादी तक आया था और नज़ीर अकबर आबादी से लेके आज की अवामी शायरी तक आया, अवामी अफसानों तक आया, वो हमारी ज़बान होनी चाहिए, यह हमारी नई नस्ल चाहती है, जैसा मैंने महसूस किया। और दूसरे हम जो नई नस्ल के लिए चाहते हैं ये कि उर्दू में भी रोज़गार पैदा हो। जब हम बहुत ज़्यादा गाढ़ी और मेयारी उर्दू बोलेंगे तो वो अदब आलिया तक तो रहेगी, अच्छी बात है, लेकिन अब उर्दू तो अब बाजार

0: इसी उम्मीद के साथ कि हमारा ये ओबी शुमारा आपके लिए मालूमात अफजा और दिलचस्प साबित हुआ होगा, मुझे यानी शाजिया खान को अब इजाजत दीजिए। आदाब।
1: अभी सामीन समात फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत का।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है हंसराज प्रसाद और साथी का गाया ये देवी गीत।

हंसराज प्रसाद और साथी को आप सुन रहे थे लोक संगीत में। अब आइए सुनते हैं ये दादरा उनकी आवाज़ में।

आप सुन रहे थे लोक संगीत कलाकार थे हंसराज प्रसाद और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

ये आवाज़ थी कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम 1942 ए लव स्टोरी। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत आर डी बर्मन का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पी के मिश्रा का लिखा ये गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाज़ में। रोज़ा फिल्म का ये गीत है, ए आर रहमान का संगीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे कार्यक्रम झंकार अपने दोस्त ज्योति स्वरूप के साथ। अब आइए सुनते हैं सपने फिल्म का ये गीत। आवाज़ है वासुदेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में।

सपने फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे वासुदेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में। अब लीजिए सुनिए गुरु फिल्म का ये गीत, आवाज़ है श्रेया घोषाल और साथियों की।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं यारिया फिल्म का ये गीत। आवाज़ है इरफान और गजेंद्र की। इस गीत को लिखा है मिथुन ने और संगीत मिथुन का ही है।

अब आइए सुनते हैं राजनीति फिल्म का ये गीत, आवाज़ है मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है, संगीत वाइनी शारपे का।

0: danger.
1: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo?
2: गुजारिश फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे के और शेल हांडा की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था तुराज ने, संगीत संजय लीला भंसाली का था। अब आइए सुनते हैं दहक फिल्म की ये रचना, आवाज़ है पंडित प्रदीप चटर्जी की।

झंकार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए फना फिल्म से ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। प्रसून जोशी के इस लिखे गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

फना फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत।

आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके ढेर सारी फरमाइशें हमें प्राप्त हुई हैं और हम आपके फरमाइशी गीतों के साथ हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत पे। और बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आया सावन झूम के। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारी।

लाल का। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त स्वस्ति श्रीवास्तव के साथ। तो सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार, और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थीं, गीत आनंद बख्शी का और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और

अभिनव जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया था। इसी गाने के लिए हमें पत्र भेजा अहमदनगर से सुनील साठे, लता साठे, शुभम साठे और शुभांगी साठे ने। संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से इस गाने को पसंद किया रुकैया पानो ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे एडवोकेट वारिस अली खान, मोहम्मद दानिश, समीर अहमद, शना बानो और रुकैया बानो। आप सभी ने हमें पत्र भेजा संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। इसी गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, श्रीमती कुमारी साहू, अजय कुमार साहू और जयकिशन साहू ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से इस गाने को सुनना चाहते थे कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। अंसार नगर नई बस्ती बजरडीहा वाराणसी से इस गाने को पसंद किया रियाज अहमद अंसारी, सिराज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, इश्तियाक अहमद अंसारी, इम्तियाज अहमद अंसारी, शहजाद अहमद अंसारी। इसी गाने को सुनना चाहते थे मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर और हसीना दिलशाद। इसी गाने को पसंद किया डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। पटियाला से इस गाने को सुनना चाहते थे मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू और वंश बत्ता और यहीं से निहारिका गुप्ता ने भी इस गाने को पसंद किया। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है आप आए बहार आई। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की हैं, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आ पाए बहाराई, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद पक्षी का लिखा ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, नवासी हुमैरा नाज, नाजिया नूरी नाज, वसीम अक्रम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, बाबू अमन अक्रम, बच्चू शेख और चीना शेख, शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसर्रत जहां नाज। इसी गाने को पसंद किया शाहपुर बघौनी समस्तीपुर से मोहम्मद मशकूर आलम तलत जहां नाज ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे जमानिया रेलवे स्टेशन से उर्मिला जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुमन और स्वाति जायसवाल। ग्राम अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर

ने इस गाने को पसंद किया। रामनगर कदमा जमशेदपुर से इस गाने को सुनना चाहते थे मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। बंगलाघाट बक्सर से इस गाने को पसंद किया लल्लन प्रसाद, चंदा देवी, विनोद प्रसाद, कलावती देवी, विकास कुमार, विशाल कुमार और रिंकी कुमारी ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे चौसा गोला बनारपुर से गीता देवी, सभापति चौधरी, एलपी चौधरी, पूजा और चंदन। इसी गाने के लिए हमें पत्र भेजा जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज। छत्तीसगढ़ ग्राम दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गाने को सुनना चाहा।

छोटी पियरी वाराणसी से इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा। आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी, बनारस से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकार, विजय लक्ष्मी और कुसुमलता सिंह ने इस गाने को पसंद किया। दुर्गा कॉलोनी हांसी से इस गाने को सुनना चाहते थे राजू मेगलानी, बबीता मेगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। गांव फरासी से इस गाने को सुनना चाहा राजकुमार डूडी और सरजीत सिंह डूडी ने।

बक्सर बिहार से इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। सारिमपुर बक्सर से राजेश जी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी ने इस गाने को सुनना चाहा, इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये प्यारा संगीत, जिसे लिखा था संतोष आनंद ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा।

ग्राम भट्टी पोस्ट सकरडीहा चंदौली से इमरती यादव ने, मुजफ्फरपुर बिहार से इस गाने को पसंद किया राजू कुमार ने, इसे गाने को सुनना चाहते थे एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा और निखिल कांगड़ा, बबीता बोत, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एस आर कांगड़ा ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें पत्र भेजा रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। मॉडल टाउन करनाल से इस गाने को पसंद किया सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और सुनीता ढिल्लो ने। इसी गाने के लिए हमें पत्र भेजा करौता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोनी और राहुल प्रजापति ने। शिवपुर वाराणसी से इस गाने को पसंद किया असगर अली ने।

भिलाई छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे मुकेश शर्मा, शरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। लच्छनपुर से इस गाने को सुनना चाहते थे रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से इस गाने को पसंद किया जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सादुल शहर राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते थे ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिता प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।

सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलाडाणा महाराष्ट्र से इस गाने के लिए हमें संदेश भेजा नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है मेला। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत

मेला फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सवारा था आरडी बर्मन ने और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू मलका मुमताज़, इंशाइली तारीख, कोदई चौकी देहलू गली, वाराणसी से बेबी आलम नफीस और अनवर भाई जरीवाला। इसी गाने के लिए हमें पत्र भेजा छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। मौनी बाबा धाम चौचकपुर से राम शकल चौधरी, सूरज शिवम, सत्यम, आकाश, टुनटुन, संजय, सक्कल भाई और बाबू श्याम लाल चौधरी और समस्त ग्रामवासी, आप सभी ने हमें पत्र भेजा मौनी बाबा धाम चौचकपुर घाट जिला गाजीपुर से। महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी और मिट्टी और कुहू का पत्र हमें प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे। पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला, अनारबाग बनारस से इस गाने को पसंद किया गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी और आयशा सुलेमानी ने। बाबा मलंग रोड हसीना सुलेमानी, जरीना सुलेमानी, साकिब सुलेमानी और जाहिद सुलेमानी ने इस गाने के लिए हमें पत्र भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू मलका मुमताज, इंशा इली तारीख, कोदई चौकी देहलू गली से बेबी आलम नफीस और

ಅನ್ವರ್ ಭಾಯ್. एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से इस गाने को पसंद किया रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, आप सभी ने इस गाने को सुनना चाहा। इसी गाने को सुनना चाहते थे अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक।

मुस्लिम बस्ती मसूरिया जोधपुर से इस गाने को सुनना चाहते थे अशोक चौधरी। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है साजन, आवाज लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने को सुनना चाहते थे कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, हमें पत्र भेजा रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर। इसी गाने को पसंद किया गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल का पत्र प्राप्त हुआ।

पद्मा टॉकी नेपा नगर मध्य प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गाने के लिए पत्र भेजा ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

मेन रोड बनोसा दरियापुर अमरावती से इस गाने को पसंद किया यश चव्हाण, अंश संदीप और माधवी चव्हाण ने।

और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। आवाजें हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्र की। गीत गौहर कानपुरी का, संगीत से सवार है राजकमल ने।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्र की आवाज में गौहर कानपुरी का लिखा ये गीत था। और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का पत्र हमें प्राप्त हुआ, इसी गाने को सुनना चाहते थे। तकिया मड़िया हूँ जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह और मोहम्मद साजिद शाह।

दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, गांव फरासी से राजकुमार डोडी और सरजीत सिंह डोडी ने इस गाने को सुनना चाहा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष ने इस गाने के लिए पत्र भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे अंसार नगर नई बस्ती बजरडीहा वाराणसी से रियाज अहमद अंसारी, सिराज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, इश्तियाक अहमद अंसारी, इम्तियाज अहमद अंसारी और शहजाद अहमद अंसारी ने। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। आइए सुने आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना।

आदर्श नगर मलोट पंजाब से इस गाने को पसंद किया राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा ने। छाही सारनाथ से मोहम्मद सोबराती शेख, मोहम्मद इदरीसी, मोहम्मद इरफान और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया।

आन मिलो सजना फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी रायगढ़ बाबा कुटीर से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, अंजलि चौहान, रितिका चौहान और आशिक चौहान ने।

0: इसी गाने को पसंद किया यवतमाल विदर्भ से हनुमान दास साहू और विशाल राउत ने।
1: रंग रंग के फूल खिले महकाए कोई रंग ना, अब हाल मिला सजना।
0: विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने हमें पत्र भेजा इस गाने के लिए, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहेटी बरेली से। और इसके साथ ही दीजिए इजाजत स्वस्ति श्रीवास्तव को कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत समाप्त करने की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू

0: की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी तो श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो।

0: ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन

0: सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
1: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
2: गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा रहा
1: है। फैसला होगा कैसे,
2: देवदत्त तो कर उनका है। कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है, आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
3: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
4: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
5: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने, पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

0: पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।
1: वत्स श्वेतकेतु,
2: आज्ञा दत्त,
1: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
2: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
1: मैं समझाता हूं
2: जी।
0: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
1: श्वेत केतु।
2: जी पिताजी।
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
2: हाँ हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से

0: निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं।
1: नहीं तात,
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात,
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसि कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी,
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है। तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है।

0: अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है।
1: तत् त्वम् असि, ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। आशोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं ज्योति यादव। सबसे पहले इनकी आवाज में आइए सुनते हैं ये गीत, रचना महादेवी वर्मा की।

ज्योति यादव के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गिटार वादन। कलाकार हैं सिद्धार्थ बनर्जी, राग है मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अमित ईश्वर। आइए सुने सिद्धार्थ बनर्जी का गाया का गिटार पर बजाया राग मधुवंती।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ बनर्जी का गिटार पर बजाया राग मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अमित ईश्वर। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।

0: बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं और उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना मंडुआडी जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शारदा प्रसाद, जिनके पिता का नाम है स्वर्गीय बुधई, पता है डेहवा रविदास मंदिर के पास मंडुआडीह वाराणसी, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 58 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना मंडुआडी जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, मोबाइल नंबर 8470859076। थाना रामनगर जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पूनम, जिनके पति का नाम है लोकनाथ, पता है भूसा मंडी मधुबन पंचवटी थाना रामनगर वाराणसी, ये पिछले कुछ दिनों से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 27 वर्ष, लंबाई 4 फुट 11 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। घटना के समय इन्होंने काले रंग की समीज और गुलाबी सलवार पहनी हुई थी। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना रामनगर जनपद वाराणसी, मोबाइल नंबर है 8546061584 और 9250845498। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात 10 बजे और संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे रात 8 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर, शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर देव नारायण यादव से बातचीत। विषय होगा धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे हंस राज प्रसाद और साथियों के गाए लोकगीत का। इन्हीं के गाए लोकगीत दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। युवा साथी अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर गीत संगीत के साथ ही सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और उज्ज्वला यादव की वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण भारत के विकास में युवाओं की भूमिका। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन में 2:30 से। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर पहने फिल्म संगीत चर्चा और सेहत ज्ञान के साथ ही सुनेंगी संध्या अग्रवाल की वार्ता, जिसका विषय होगा पिकनिक, परिवार और दोस्तों संग सुखद समय। इसके अलावा श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे शाम 5:00 से शाम 6:10 पर, शाम 7:00 से शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।

0: बुनियाद रखा। जनता चौपाल के दौरान उन्होंने मकामी बाशिंदों से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल और तजावीज सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के काबिल क्यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लीग सीजन 4 के मैचों के T20 टिकटों की लॉन्चिंग आज लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुशीर अवनीश अवस्थी इस तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि यूपी T20 लीग सीजन 4 का इनेकाद 14 अगस्त से 6 सितम्बर 2026 तक होगा। इस बार लीग लखनऊ और कानपुर में मुनक्किद होगी। अयोध्या के जिला जेल इंतजामिया ने उन खबरों की तरदीद की है कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे के गबन के मामले में मुलजमान को जेल में खसूसी सहूलियात दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट मुकेश कुमार ने वाजे किया कि इस मामले में कुल 8 मुलजमान कैद में हैं और उन्हें कोई खास सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन तमाम अजला में दरमियानी से भारी बारिश हो रही है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि रियासत भर में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश की वजह से एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। रियासत दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। महकमे मौसमियात ने रियासत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कहा है कि मौसम के मौजूदा सूरत हाल अगले 3 दिन तक बरकरार रहने के इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में तराई इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान है। दरी असना जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा को खराब मौसम की वजह से कल रोक दिया गया था। मौसम के बेहतर होने और रास्तों को महफूज करार देने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा अगले माह 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: नमस्कार सखियों, कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी मंजरी और आज हमारे साथ हैं हमारी सखी पूजा। नमस्कार पूजा जी।
5: मंजरी जी, आपको और मेरी प्यारी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
4: और पूजा जी कैसी हैं, बारिश के मौसम में कैसे एंजॉय कर रही हैं आप? हालांकि बारिश बहुत अच्छी हो तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी।
5: हाँ, बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी रिमझिम फुहार तो चली रही
4: जी,
5: है
4: जी, जिससे मन थोड़ा अच्छा तो हो ही गया।
5: हाँ, और इस मौसम में अच्छा लगता है गाने सुनना, बैठ के बारिश का मतलब आनंद लेना, ये सब चीजें तो बहुत अच्छी लगती
4: इस मौसम में। लेकिन एक और भी मन करता है,
5: क्या?
4: गर्मा गर्म पकौड़े खाने का
5: और साथ में भुट्टा भी
4: और बहुत सारी चटपटी चीजें खाने का, जो कि आमतौर पे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो मन मचल जाता है और लगता है कि ये खा ले वो पी ले।
5: हाँ,
4: और ऐसा बहुत सारा कुछ होता है कि जो सखियों हम सभी को पता भी है कि हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा ना हो या हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमें पक्की तरह से बात पता है, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि तबीयत, जो जैसे बारिश में होता है कि अक्सर पेट खराब हो जाता है, दस्त, डायरिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं, तो बहुत सारी चीजें हम अनजाने में कर जाते हैं जिसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है।
5: हाँ मंजू जी, इसीलिए कहते हैं ना कि एक सेहतमंद जीवन शैली जो हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डेली अगर फॉलो नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे सेहत पे पड़ता है। अब जैसे देखिए, कभी बारिश हुई और हम लेट सोए तो सुबह लेट उठे, तो हमारा क्या है, एक डेली रूटीन जो हम फॉलो करते आ रहे थे कि हमें सुबह इतने बजे ही जगना है। फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि हमारी जो सखियां हैं अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि कभी लेट उठ गई तो वो नाश्ता करना ही भूल जाती हैं। तो इससे क्या होता है, उनका सेहत जो है वो धीरे धीरे मतलब खराब होता है, और इन सब चीज़ों को वो इग्नोर करती हैं कि चलो मैंने ये काम पहले करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ही हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो एक ये होता है कि इससे हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
4: बिल्कुल सखियों, आजकल की भागदौड़, काम का प्रेशर, हम सब ने बहुत पैसा कमाया और बहुत सुख सुविधाएं भी हमारे जीवन में हैं, लेकिन एक चीज़ जो पीछे छूट गई है वो है हमारी सेहत। और बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर शरीर साथ दे रहा है तो लाइफ की हर खुशी दुगनी हो

0: जाती है। और सखियों, सेहतमंद रहने का यह तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप जिम में जाकर घंटों पसीना बहाएं या उबला हुआ बेस्वाद खाना खाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी रोज की आदतों में बस छोटे छोटे बदलाव करना।
1: और जैसे कि देखिए ना मंजरी जी, ये बोला जाता है कि पर्याप्त नींद लेना भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। आजकल तो ये जो सोशल मीडिया की वजह से हम पूरे टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं कि हमें ये भी देखना है, ये भी फॉलो करना है, तो उसका सीधा असर हमारी आंखों पे पड़ता है। हमारी आंखें जल्दी थक जाती हैं और कभी कभी हम लेट से उठते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया
0: जी
1: ये। और जो योग है, एक्सरसाइज, ये तो बहुत पहले से ही चली आ रही है, बस उसको हम आज शुरू करना, मतलब फिर से करना उसको स्टार्ट किए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें पहले से ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो जो हमारी जो सखियां हैं वो अपने परिवार में इतना व्यस्त रहती हैं कि उनके पास समय ही नहीं रहता कि वो हमें अपने लिए समय निकाले। तो सखी, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, स्वस्थ रहिए और तनाव ना लीजिए। मतलब किसी भी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में है, क्यों मंजरी जी?
0: बिल्कुल। और सखियों, पूजा जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, और लेकिन एक चीज़ शायद वो बताना भूल गई कि सबसे पहले तो हमें भूख लगती है, तो जो हमारे जबान पे नियंत्रण है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर बाहर का चटर पटर खा लेते हैं। तो सखियों, सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। यानी कभी कभी स्वाद के लिए बाहर खा लेना तो ठीक है, लेकिन इसे आदत ना बनाएं और घर की खाने की आदत डालें, जिसमें दाल, रोटी, हरी सब्जियां, ताजे फल, यानी कि एक कुल मिला के संतुलित भोजन हो। और पूजा जी ने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी यानी योग वगैरह करना है, ये तो आप भी जानते ही हैं। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो ऐसा कर सकते हैं कि घर के काम हम जैसे कि सीढ़ी चढ़ना है, लिफ्ट के बजाय सीढ़ी से चढ़ लिया, या फिर घर में ही कुछ थोड़ा बहुत डांस वंस कर लिया, तो ये भी हमारे लिए अच्छा होता है। और दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और इससे हमारे चेहरे पर चमक भी आती है। और सबसे अंतिम और ज़रूरी बात, पूजा जी ने जैसे कहा कि तनाव को जीवन पर हावी न होने दें। और जब हम छोटे छोटे बदलाव करेंगे ना, तो यही हमारे बड़े सुधार का आधार होता है। इसलिए सखियों, छोटी छोटी अच्छी बातें अपनाएं और खुद को और अपने परिवार को भी सेहतमंद बनाएं।
1: तो मंजरी जी, जैसा कि आपने बताया कि तनाव को दूर रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, तो तनाव को दूर करने का एक साधन संगीत भी तो है, म्यूजिक भी तो है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बारिश की बात कर रहे थे, बारिश हो तो नहीं रही है, लेकिन संगीत के माध्यम से हम बारिश का आनंद जरूर ले सकते हैं। तो सखियों, आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ भींगा भींगा सा गीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ 0542।

0: और 2227658।
1: तो पूजा जी, आपने गीत बड़ा अच्छा सुनाया और सच में मन बड़ा खुश हो गया। मैं तो स्टूडियो में बैठ के झूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि चलो बस मैं भी गाने में जो सीन है उनके साथ मैं बिल्कुल खो गई थी। और हमने मेघा से रिक्वेस्ट भी कर ली कि अब तो बरस ही जाओ, और नहीं भी बरसेगा तेज दिन ना, तो ये जो रिमझिम सी बरसात हो रही है ये भी बड़ी अच्छी होती है और मन को बड़ा सुकून देती है। तो जब इस तरह का बारिश का मौसम आता है फिर तो मन करता है कि खाएं पिए और अपनों का साथ हो तो और भी अच्छा लगता
2: और
1: है।
2: कहीं घूमने भी जाए,
1: घूमने का मन भी करता है कि हाँ कहीं अपने के साथ हम कहीं घूमने जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग पिकनिक की बात करने वाले
2: हाँ वो तो
1: हैं?
2: है।
1: हम लोग पिकनिक की ही बात करने वाले हैं, तो एक अच्छी सी वार्ता हम सुन लेते हैं पिकनिक के बारे में। वार्ता का शीर्षक है पिकनिक, परिवार और दोस्तों संग सुखद समय, और वार्ताकार हैं संध्या अग्रवाल।
3: फोन ही नहीं लग रहा, कब से लगा रही हूँ, पता नहीं कैसा नेटवर्क है, बात करने का मूड ही चला जाता है, मन की बातें मन में रह जाती हैं। इससे अच्छा पहले का समय था, पत्रों के आदान प्रदान से जी भर के बातें हो जाती थी। बुआ जी चिड़चिड़ाती जा रही थी और मोबाइल फोन हाथ में लिए उसके बटनों पर अपनी उंगलियां नचा रही थी। भैया भाभी से बात जो करनी थी, अम्मा तो 10 बार कहलवा चुकी कि बिटिया छुट्टी हो तो दामाद जी और बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए आ जाना, मगर हम लोगों का मन कुछ और ही था। सभी एक साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहते थे। भैया भाभी भी काम की व्यस्तता के कारण या फिर कहिए बच्चों के स्कूल की वजह से जल्दी कहीं जा नहीं पाते थे। इस बार बड़ी मुश्किल से सपरिवार कहीं शांत सुरम्य वातावरण में साथ बिताने का मन था। सभी बच्चे बड़े हो रहे थे, आगे ये पक्का ही था कि समय की कमी होनी ही है और पढ़ाई को ज्यादा महत्व देना ही सही होगा। फिर घूमने फिरने का कार्यक्रम, वो भी सभी के साथ, मुश्किल ही था। इसलिए ये जो सुनहरे पल हैं, हम सभी चाहते हैं कि संजो कर रख लें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। आमतौर पर हम लोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहते हैं, परिवार के साथ समय बिताने का वक्त ही नहीं मिल पाता और काम का बोझ इतना रहता है कि समय बिताने के साथ हम कोशिश ही नहीं कर पाते कि कहीं जा पाएं। काम का बोझ और अन्य निजी कामों के बीच उलझे रहने के कारण परिवार के साथ रहना एक अलग ही विषय बन जाता है। अपनी व्यस्तता के कारण हम लोगों का रिश्तेदारों से मिलना भी असंभव हो जाता है। ऐसे में यदि हम अपने मम्मी पापा, दादा दादी, चाची ताई, अन्य के साथ कहीं घूमने या पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना लें तो हमें भी दिन भर की थकान और मानसिक सुकून का जरिया मिल जाएगा। और जिस प्रकार प्यार दुलार से महरूम हम वक्त की आंधियों के थपेड़े खाते रहते हैं, उसमें प्यार और ममता की फुहार भी बरस जाएगी। कुछ अपनी सुनाने और कुछ उनकी सुनने के लिए हमें समय मिल जाएगा। इसके लिए पहले हमें अपने परिवार यानी कि अपने घर के सभी सदस्यों को पसंद नापसंद के बारे में जानकर विचार करना होगा, उसी हिसाब से हम पिकनिक का कार्यक्रम निश्चित कर सकेंगे। हर किसी को खुशी मिले, हर कोई खुलकर मनोरंजन कर सके, हमें पिकनिक के लिए ऐसा ही नैसर्गिक स्थान चुनना पड़ेगा। पिकनिक का मतलब ये नहीं कि आप कहीं महंगे होटल या बड़े रिसोर्ट में जाकर ही रुकने या घूमने का कार्यक्रम तय करिए। पिकनिक का अर्थ होता है जितना समय हम साथ में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से अपने आचार विचार साझा करें, और हाँ यदि कोई समस्या या आपसी मनमुटाव भी हो तो चुटकी बजाते हंसते हंसाते खेल खेल में समाप्त किया जा सकता है, जिससे आने वाला कल खुशनुमा हो जाएगा। जितने देर हम साथ रहें और हमारे परिवार के सदस्यों के बीच हंसी चिटोली का वातावरण बना रहे, यही हमारी कोशिश रहती है। उन पलों का हम खुल कर जिये। आखिर इन्हीं सब बातों का विचार करते करते भैया ने पिकनिक की एक त्वरित योजना बना ली। हम सभी को अंतहीन गपशप करने के साथ में अनेकानेक चटपटे व्यंजन खाने और तरह तरह के खेल खेलने के साथ एक नई जगह घूमने के लिए तैयार कर दिया। हम सभी एक साथ तैयार भी हो गए और हम सभी अपनी अपनी मस्ती में चल दिए ब्लू माउंटेन की सैर पर। घर से हम सभी अपनी अपनी टोली लेकर मिनी बस में निकले। मन में एक अजीबोगरीब सी उमंग और उल्लास था कि आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे। ऐसी तरंगे मन मस्तिष्क में हिलोरे ले रही थी, न जाने कब हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे।

12 वर्ष के चक्र के बाद खिलने वाला नील कुरुंजी का फूल परिवार के साथ सैर के लिए ब्लू माउंटेन या पश्चिमी घाट को चुनने के पीछे मुख्य आकर्षण था। भैया को इसके बारे में बहुत जानकारी थी, इसलिए ही तो इस स्थान को चुना था भैया ने। हम सभी के साथ पिकनिक पर आने के लिए भैया ने हमें तैयार किया था। कोडई कनाल से कुमाऊदा रास्तों पर लंबी ड्राइव अपने आप में एक अलग ही अनुभव था और परिवार के सभी सदस्यों ने भी बस से उतरकर सड़क किनारे बारिश से भीगे कोमल हरे पौधों को देखने का आनंद उठा, मन को प्रफुल्लित कर लिया था। ऐसे तो हल्की हल्की धूप वाले दिन सैर सपाटे के लिए सुविधाजनक होते हैं, मगर मौसम का क्या, कभी धूप कभी बारिश, और परिवार के साथ मस्ती भर पल बिताने के लिए क्या सोचना।

0: दिन सैर सपाटे के लिए सुविधाजनक होते हैं, मगर मौसम का क्या, कभी धूप कभी बारिश, और परिवार के साथ मस्ती भर पल बिताने के लिए क्या सोचना। फूफा जी ने एक अच्छे फोटोग्राफर होने के नाते अपने कैमरे से खूबसूरत वादियों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली थी। उधर ठंडी हवा के झोंके हर किसी को नई स्फूर्ति प्रदान कर तरोताजा भी कर रहे थे। बारिश की फुहारों का जादू तो मत ही पूछिए, सभी के सभी मदमस्त हो गए थे, सभी प्रकृति के साथ घुल मिल गए थे, क्या छोटा क्या बड़ा। कुछ दूर ढलान की ओर उतरते ही हमें एक पार्क दिखाई दिया। पेट में चूहे भी अटखेलियां खेल रहे थे, हम सुबह से जो निकले थे। देखते ही देखते चाची और भाभी ने मिलकर चटाई बिछाई, बस और क्या था। तुरंत भैया ने बस में से खाने और पीने का सामान उसके साथ साथ खेलने गाने और बजाने का सामान भी निकाल लिया। चाचा जी के साथ में ही चले आ रहे थे। बुआ जी और मम्मी ने मिलकर सैंडविच और भेलपूरी बनाई, किसी को चाय किसी को नींबू पानी भैया दे रहे थे। उधर से पापा ने कहा, लाओ बेटा मैं सबका मुंह मीठा कराता हूँ, मौका भी है नजाकत भी है। बस एक गुलाब जामुन निकालकर फूफा जी के मुंह में रख दी। फूफा जी का मुंह तो गोलगप्पे जैसा फूल गया। ऐसे ही चुहलबाजी और मस्ती भरे माहौल में सबने अपनी छोटी सी भूख की शुदा को शांत किया, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी था। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से घिरा ये पिकनिक क्षेत्र शांत था, इसलिए केवल पक्षियों की चहचाहट ही शांति को भंग कर रही थी। पल पास में कलकल बहता झरना आकर्षण का केंद्र था। फिर क्या था, हम लोगों का मन हो ही गया एक एक डुबकी लगा ली जाए, चलो झरने में। कुछ लोगों को वहीं छोड़कर हम सभी झरने की छोटी सी चढ़ाई पर चढ़ गए। हम प्रकृति से जुड़कर इतना अद्भुत आनंद महसूस कर रहे थे, हमने आज तक ऐसा आनंद नहीं पाया था। उधर भाभी और बुआ जी लोग झरने के किनारे तराई में तैर रही बत्तखों और उछल कूद करती गिलहरियों को दाना पानी डाल रही थी। फूफा जी ने जैसे ही कैमरे की क्लिक मारी, बुआ जी मानो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि बुआ जी की जुल्फें हवा में लहराकर उनके गालों पर बिखर रही थी। फूफा जी अनायास ही बोल उठे, ओह मेरी जोहरा जबी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। इसी आनंददायक पल को गुजारने तो हम पिकनिक पर आए थे, खुलकर जिंदगी के जी लें कुछ पल। उधर म्यूजिक सिस्टम पर गाजना बज रहा था, उसे सुन दादी जी भी गुनगुनाने लगी। फिर क्या था, देखते ही देखते अंताक्षरी का माहौल बन गया। बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरा बगीचा सुगंधित हो रहा था। धीरे धीरे सभी अपनी मस्ती में झूमने गाने लगे, मानो ये क्षण यहीं रुक जाए। मन में विचार आ रहा था कि काश हमेशा ही ऐसी मस्ती भरी पिकनिक हो जाया करे। देखते देखते शाम ढलने लगी, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। शाम को हमने अलाव जलाया और तारों से जगमगाते आकाश के नीचे पिकनिक का समापन किया। परिवार के साथ पिकनिक मनाना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, जिसका चंद शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। वह चाहे प्रकृति का आनंद लेना हो या साथ भोजन कर खेल खेलना हो, पारिवारिक पिकनिक सभी को सामान्य दिनचर्या से हटकर एक साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर देती है। यह एक सुकून भरे मजेदार माहौल में लगे स्थायी यादें बनकर परिवार को करीब लाती है। एक प्रेम भरा घनिष्ठ रिश्ता परिवार के सदस्यों के लिए शक्ति का स्रोत हो जाता है। पिकनिक आपके दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े और उनके करीब रहने शानदार तरीका है। पिकनिक पारिवारिक रिश्तों को पोषित और मजबूत करने का एक मूल्यवान अवसर भी होता है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य और समग्र खुशी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का शीर्षक था पिकनिक, परिवार और दोस्तों संग सुखद समय। वार्ताकार थी संध्या अग्रवाल।
2: और सखियों, हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत में बात किए हैं कि सेहत और सेहतमंद जीवन शैली। तो जैसे कि खान पान भी हमारी सेहत का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो बहुत सारे प्रकृति ने हमें फल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रदान की हैं कि जिनके सेवन से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज के सेहत ज्ञान में सखियों, हम बात करेंगे अंजीर के फायदे की। तो पूजा जी, क्या आप बताएंगी अंजीर के कौन कौन से फायदे होते हैं?
1: मंजरी जी, अंजीर तो पोषक तत्वों का खजाना है। कहते हैं ना कि इसको खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं और जो पाचन जो होता है हृदय संबंधी दिक्कतें होती हैं वो भी सुधर जाती हैं, और साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, कैल्शियम है, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और पता है अंजीर खाने से हमारे जो बाल हैं, जो स्किन है, वो भी बहुत ग्लो करता है। और सबसे बड़ी बात है कि

0: आयरन की मात्रा जो होती है वो अच्छी होती है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। और मंजरी जी, एक बात मैं बताना चाहूँगी अपनी सखियों को भी कि
1: जी
0: अंजीर की जो तासीर है वो गर्म होती है, इसलिए अंजीर को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट खाने से ये बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारी जो सखियां वजन से परेशान हैं, तो उनके वजन के नियंत्रण में भी ये सहायक है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर होता है और इसे खाने के कारण काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ लगता है, जिससे कि आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। तो सखियों, ये तो हमारा आज का सेहत ज्ञान रहा। और अब मौसम बड़ा खुशगवार सा है और बरसात का थोड़ा थोड़ा सा तो लगा ही है, मतलब रिमझिम फुहार बरस रही है, कभी बंद हो रही है। तो हम लोग इसका सिलसिला, लेकिन हम लोग बंद नहीं करते, हम लोग फिर से कार्यक्रम में सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: पूजा जी, गीत बहुत अच्छा था
1: हाँ
0: और हम लोग के समापन का समय यानी कि चलने का भी समय हो गया है।
1: हाँ
0: तो चलते चलते ये बोलेंगे सखियों कि हम सभी के घर में बच्चे होते हैं और हम सब अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन हम कभी, क्या आपने खुद पे भी ध्यान दिया है, हमने अपने पर भी ध्यान दिया है कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम जो व्यवहार करेंगे वही तो हमारे बच्चे सीखेंगे।
1: और इसीलिए कहते हैं ना कि हमें उनके सामने वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए उनसे चाहते हैं। बच्चों के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और उनसे गुस्से में तो कभी भी बात ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे गुस्से में बात करेंगे तो वो अपने मन की बात आपसे कभी नहीं कह पाएंगे। और जितना हो सके उनके साथ समय बिताएं, गलती होने पर उन्हें डांटे नहीं, प्यार से समझाएं और उनका सम्मान करें, उन्हें समय दें, उनके साथ वक्त बिताएं, खेलें, उनके साथ पढ़ें और उनकी हर छोटी छोटी बातों को पूछें और जानें। इससे क्या होता है कि वो आप उनके नज़र में एक रोल मॉडल तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही आप एक ऐसे मार्गदर्शक भी बनेंगे जिनसे वो बिना डरे बिना कुछ पूछे वो हर बात आपको बता सकते हैं।
0: कहने का मतलब सखियों ये है कि हम जो चाहते हैं पहले वो हमें देना होगा। अगर हम चीख चिल्ला के बात करते हैं या हम खुद देर से सो के उठते हैं तो हम अपने बच्चों से ऐसे कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, वो बहुत प्यार से बात करेंगे। तो पहले खुद करिए और उसके बाद बच्चों से उम्मीद करिए। तो सखियों अपने व्यवहार में अगर कोई कमी है तो उसे सुधारें और अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। और अब हम भी अपने आप को थोड़ा सा समेट रहे हैं और कार्यक्रम का करते हैं समापन। और अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी सखी मंजरी
1: और पूजा को
0: दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृहलक्ष्मी।
4: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं हंस राज प्रसाद और साथी। सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुनते हैं ये कहरवा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं हंस राज प्रसाद और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे कहरवा। आइए आप सुनते हैं इनका गाया गंगा गीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं हंसराज प्रसाद और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे गंगा गीत, और अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं इनका गाया देशभक्ति लोकगीत।
1: हिंदुस्तान हवे सबसे देशवा से सुघर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ

0: दिलाई गई बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
1: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
2: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटेग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर

0: प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाए। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास

0: इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
3: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है सोमवार, तो आज हम आपके लिए लेकर आते हैं भोजपुरी फिल्मी गाने। हमारा नंबर आपको पता ही है, आप सबको व्हाट्सएप संदेश करना है, नंबर है 7905519981। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं, हम आपके नाम को शामिल करेंगे। और आज की फिल्में, जिन फिल्मों के गाने सुनने के लिए आप हमें संदेश भेजेंगे, उन फिल्मों के नाम हैं गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, बिहारी बाबू और नदिया के पार। इन फिल्मों के गाने सुनने के लिए आप हमें संदेश भेजिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो इस फिल्म के गाने से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत शैलेंद्र का, संगीत चित्रगुप्त का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

गंगा मैया तो है पियरे चढ़ाई, वो इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने, और इस गाने के लिए आप सभी के ढेरों संदेश हम तक पहुँचे। सबसे पहला जो संदेश है वो है सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्ज़ापुर का। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर, आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ, इसी गाने को सुनना चाहते थे। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्भरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, इसी गाने को सुनना चाहते थे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, इसी गाने के लिए संदेश भेजा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, इसी गाने को सुनना चाहते थे। गाजीपुर से गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विकास गिरी और समस्त परिवार, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ। जलालाबाद वेस्ट से इस गाने को सुनना चाहा सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने, इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, इसी गाने के लिए संदेश भेजा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जम दाड़े, इसी गाने के लिए संदेश भेजा। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने, आप सभी ने हमें संदेश भेजा। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और अल कबीर, आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ बालोद छत्तीसगढ़ से। इसी गाने के लिए संदेश भेजा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने, इसी गाने को सुनना चाहते थे। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, इसी गाने के लिए संदेश भेजा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। नांदेड़ महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहा नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने,

इसी गाने को सुनना चाहते थे मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी। इसी गाने के लिए संदेश भेजा अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। वार्ड नंबर 1 पोफाली यवतमाल से इस गाने को सुनना चाहते थे जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना, फिल्म का नाम है बिहारी बाबू। आवाजें सुरेश वाडकर और अलका याग्निक की हैं। गीत लिखा है ब्रज किशोर दुबे ने, संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

बिहारी बाबू फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे, सुरेश वाडकर और अलका याग्निक की आवाज में। ब्रिज किशोर दुबे का लिखा ये गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। और इस गाने के लिए हमें आप सभी की फरमाइशें मिली। छत्तीसगढ़ पलारी से इस गाने को सुनना चाहते थे प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा विशाल मिश्रा, बंधुआ बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से। इसी गाने के लिए संदेश भेजा धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। आपका संदेश प्राप्त हुआ, धन्यवाद। दीनानाथ सुमंत कुमार प्रजापति, आप सभी ने हमें संदेश भेजा बलिया उत्तर प्रदेश से। रमाकांत गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, आस्था गुप्ता, अव्या गुप्ता, आप सभी का संदेश प्राप्त हुआ गाजीपुर से। ग्राम बगई किराकत जौनपुर से हमें संदेश भेजा रमंता यादव, रमाशंकर गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, लकी गुप्ता, आप सभी का। दतरेगी से हमें संदेश भेजा भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। नगर पंचायत गंगापुर वाराणसी वार्ड नंबर 8 लोकमान्य नगर से हमें संदेश भेजा जावेद उर्फ जुबेद अंसारी, आफताब अंसारी। इसे गाने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल और माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से इस गाने को पसंद किया विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल ने। बिहारी बाबू फिल्म का ही गाना सुनना चाहते थे चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम शकल चौधरी। इसी गाने को पसंद किया पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह ने। आर अश्विन सानू, शोभा नाथ अवस्थी और आपके सभी साथियों ने हमें संदेश भेजा शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। इसी गाने के लिए संदेश प्राप्त हुआ नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहकर। इसी गाने के लिए संदेश भेजा डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गाने को पसंद किया टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश प्राप्त हुआ। बिहारी बाबू फिल्म का ये गाना सुनना चाहते थे दिलदार नगर गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इशार और नरगिस खातून। बदायूं से इस गाने के लिए हमें संदेश भेजा देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत।

गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से इस गाने को सुनना चाहते थे बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। इसी गाने के लिए संदेश भेजा खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और आपके परिवार के सभी सदस्य। यवतमाल महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहते थे लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और पूरा लोखंडे परिवार। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह की है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। आइए सुने नदिया के पार फिल्म का ये गाना।

नदिया के पार फिल्म का ये प्यारा संगीत अभी आप सुन रहे थे हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का और इस गाने के लिए हमें संदेश भेजा आप सभी श्रोताओं ने ग्राम बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समरराज आर्यन, बेबी आरोही अंशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें संदेश भेजा। आप सभी का संदेश मिला, धन्यवाद। इसी गाने को सुनना चाहते थे स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। इसी गाने के लिए संदेश भेजा गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विकास गिरी और समस्त परिवार ने। आप सभी का संदेश मिला गाजीपुर से। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल का संदेश प्राप्त हुआ। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे का संदेश प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। इसी गाने के लिए हमें संदेश भेजा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने।

सिंह, आप सभी ने संदेश भेजा, आपका धन्यवाद। उदयपुर राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते थे रमेश भारती, विनीत और मिथिल। इसी गाने को सुनना चाहते थे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। सैदपुर गाजीपुर से रेणु सोनकर ने हमें इस गाने के लिए संदेश भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे दिलदार नगर गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। इसके साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की दीजिए इजाजत स्वस्ति श्रीवास्तव को। अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, डीटीएच न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न होती है आज की ये सभा। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: जहाँ इसे नाम मिला शतरंज। इसमें पहली चाल हमेशा सफेद मोहरों वाला खिलाड़ी ही चलता है।
1: वहां जब कोई राजा को घेर लेता है तो कहा जाता है शाह मात, यानी राजा लाचार है, और इसी ने इंटरनेशनल

पौष्टिक भोजन, टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक कर सकते हैं। वे स्वच्छता अभियान चला सकते हैं और लोगों को खुले में कचरा फेंकने तथा खुले में शौच जैसी आदतों से बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गांव की पहचान सिर्फ खेत खलिहान से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसकी सफाई। जिस गांव की गलियां साफ हो, पानी शुद्ध हो, लोग स्वस्थ हो, वही असली आदर्श गांव होता है। अपने गांव के विकास में युवा क्या कर सकते हैं? युवा साथी मिलकर हर हफ्ते एक स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। स्कूल, मंदिर, पंचायत के आसपास कचरा उठाना, नालियों की साफ सफाई करना, एक दिन की मेहनत पूरे महीने की बीमारी को दूर कर सकता है। शौचालय का इस्तेमाल करें, कचरे के लिए डस्टबिन रखें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा हर घर साफ पानी पहुंचे, हैंडपंप और टंकी के आसपास

वही असली आदर्श गांव होता है। अपने गांव के विकास में युवा क्या कर सकते हैं? युवा साथी मिलकर हर हफ्ते एक स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। स्कूल, मंदिर, पंचायत के आसपास कचरा उठाना, नालियों की साफ सफाई करना, एक दिन की मेहनत पूरे महीने की बीमारी को दूर कर सकता है। शौचालय का इस्तेमाल करें, कचरे के लिए डस्टबिन रखें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा हर घर साफ पानी पहुँचे, हैंडपंप और टंकी के आसपास गंदगी ना हो, पानी को ढक कर रखें। पौष्टिक भोजन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाकर, यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपने माओ बहनों को बताएं, हरी सब्जी, दाल, फल खाने से ताकत आती है। अगर कुपोषण को भगाना है तो थाली में पोषण को लाना होगा। टीकाकरण और स्वास्थ्य जाँच के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम चलाकर, छोटे बच्चों का टीका समय पर लगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और बड़े बुजुर्गों को हर 3 से 6 महीने में स्वास्थ्य जांच हो। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके, आज खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पढ़े लिखे युवा नई कृषि तकनीक, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई, मोबाइल आधारित कृषि जानकारी और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। खेती को लाभकारी बनाना ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जिसके लिए जरूरत है कि नए तकनीक का इस्तेमाल हो। युवा किसान भाइयों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर जैसे मशीनों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कम समय, कम मेहनत और ज्यादा पैदावार कृषि को बढ़ावा देगा। रसायन वाली खेती से जमीन खराब हो रही है। युवा जैविक खाद, गोबर की खाद, नीम के कीटनाशक अपनाने में मदद कर सकते हैं। इससे फसल भी अच्छी होती है और दाम दुगना मिलता है। पानी की बचत जरूरी है। ड्रिप और फवारा सिंचाई से कम पानी में ज्यादा फसल होती है। युवा पंचायत के साथ मिलकर इसे हर खेत तक पहुंचा सकते हैं। आज हर किसान के पास फोन है, मौसम, मंडी के भाव, कीट की दवा सब ऐप पर मिल जाता है। युवा किसानों को ये ऐप चलाना सिखा सकते हैं। बीज का चुनाव, मिट्टी की जांच, सही समय पर बुआई, ये सब वैज्ञानिक तरीके अपनाने से पैदावार दुगनी हो सकती है। खेती को घाटे का सौदा नहीं बल्कि लाभ का धंधा बनाना होगा, और ये तभी होगा जब परंपरा के साथ आधुनिकता जुड़ेगी। खेत की मिट्टी की जांच कराएं, नए तकनीक अपनाएं, सीधे मंडी से जुड़ें। खेती को लाभकारी बनाना ही ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी नींव है। आज का समय डिजिटल युग का है। गाँव में भी इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच बढ़ रही है। युवा लोगों को ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल शिक्षा के बारे में जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इससे समय भी बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण भी ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार है। युवा महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। जब गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहीं भगवान का भी वास होता है। वही बात गाँव पर भी लागू होती है। महिला सशक्तिकरण ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत आधार है। आज गांव की आधी आबादी महिलाएं हैं। अगर ये आधी आबादी आगे बढ़े तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। युवा गांव की महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षा का प्रसार करके, हर बेटी को स्कूल भेजना। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को भी अच्छा भविष्य देती है। कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी द्वारा सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, हस्तशिल्प, ये सब सीखकर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। स्वरोजगार को प्रोत्साहन करके स्वयं सहायता समूह, डेयरी, मशरूम, अचार, पापड़ का बिजनेस, छोटी शुरुआत बड़ी कमाई का रास्ता बन सकता है। सशक्त महिला, सशक्त परिवार एवं सशक्त गांव केवल नौकरी ही सफलता का मार्ग नहीं है। युवा छोटे छोटे उद्योग, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण भी युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। ग्रामीण विकास केवल आर्थिक विकास नहीं है, यह सामाजिक विकास भी है। युवा नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकने, दहेज प्रथा समाप्त करने, लैंगिक समानता बढ़ाने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज सरकार भी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं और ग्रामीण विकास को

बढ़ावा दे रही है। यदि युवा इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और दूसरों तक पहुंचाएं, तो अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। यदि गांव का हर युवा यह संकल्प ले कि वह अपने गांव के लिए समय देगा, लोगों को जागरूक करेगा और अपनी शिक्षा तथा कौशल का उपयोग समाज के हित में करेगा, तो भारत का ग्रामीण विकास और तेजी से होगा। गांव केवल रहने की जगह नहीं है, वे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी आत्मा है। जब गांव मजबूत होंगे, तभी भारत सशक्त बनेगा। युवा केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी सोच और उनका समर्पण ही ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित बना सकता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ग्रामीण भारत का अधिकांश जीवन खेती पर निर्भर करता है। आज के समय में केवल पारंपरिक खेती से किसानों की आय बढ़ाना कठिन हो गया है, इसलिए आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और नए प्रयोगों को अपनाना आवश्यक है। इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा नई जानकारी, नई तकनीकों को जल्दी सीखते हैं और उन्हें गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आधुनिक खेती का अर्थ केवल नए उपकरणों का उपयोग करना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना भी है। इसमें मिट्टी की जांच कराना, सही समय पर बुवाई करना, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग, उन्नत बीजों का चयन, आधुनिक सिंचाई, फसल चक्र अपनाना शामिल है। इससे उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। पढ़े लिखे युवा इन तकनीकों को सीखकर अपने गांव के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैविक खेती आज पूरे विश्व में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के स्थान पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जिनका सामना ग्रामीण भारत के युवा करते हैं। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं उनकी क्षमता और उत्साह को प्रभावित करती हैं। यदि इन चुनौतियों को समझकर उनका समाधान किया जाए, तो युवा ग्रामीण विकास के सबसे बड़े वाहक बन सकते हैं। बेरोजगारी और रोजगार के सीमित अवसर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर नहीं होते। खेती पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों की कमी के कारण अनेक युवा काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे गांव की प्रतिभा और श्रम शक्ति दोनों कम होती है। युवाओं को स्वरोजगार, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन, छोटे उद्योगों की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार की कौशल विकास योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों का लाभ लेकर वे अपने लिए तथा दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। कई गांवों में अच्छी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं सीमित है। परिणाम स्वरूप युवा शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन रोजगार के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल विकसित नहीं कर पाते। डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। युवा स्वयं भी नई तकनीकों को सीखे और दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करे। कई गाँव में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, सिंचाई और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। इससे विकास की गति धीमी होती है। युवाओं को ग्राम सभा, पंचायत की बैठकों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। वे सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर प्रशासन से संवाद स्थापित करके विकास कार्यों में गति दे सकते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी और अंधविश्वास जैसी समस्याएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं। ये सामाजिक प्रगति में बाधा है। युवाओं को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। शिक्षा, संवाद और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से वे लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। युवा आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, ड्रोन, मोबाइल, मौसम संबंधित जानकारी और मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधाओं का उपयोग कर किसानों को जागरूक कर सकते हैं। इससे खेती अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनेगी। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रही हैं। युवा वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और प्लास्टिक मुक्त गांव जैसे अभियानों का नेतृत्व कर सकते हैं। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। चुनौतियां किसी भी समाज के विकास का हिस्सा होती हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारत के युवा यदि शिक्षा, कौशल, तकनीक, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े, तो वे बेरोजगारी, संसाधनों की कमी और सामाजिक कुरीतियों जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं।

0: करते हैं। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, अवसर भी उतने ही बड़े होते हैं। और जब युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो वे केवल अपना भविष्य नहीं बदलते, बल्कि वे पूरे गांव, राष्ट्र के भविष्य को नई दिशा देते हैं। यही ग्रामीण भारत के विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रामीण विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, विशेष रूप से युवाओं की भी जिम्मेदारी है। युवा शिक्षा, तकनीक, सेवा और नवाचार को अपनाकर गांव के विकास में योगदान देंगे तो भारत शीघ्र ही आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनेगा। जब गांव का युवा जागता है तो केवल एक गांव नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। ग्रामीण भारत की प्रगति ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने गाँव, अपने समाज और अपने देश के विकास के लिए संकल्प लें।
1: तो दोस्तों, इस वार्ता के बाद आप लोगों को भी लग गया होगा कि आप अपने ग्रामीण विकास में योगदान दे सकते हैं, तो चलिए आप भी दीजिए। पर दोस्तों, अब बारी है उसकी जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ, वही आपके क्वेश्चन के आंसर जानने की और विनर्स के नाम जानने की। तो दोस्तों, हमने आपसे कल पूछा था कि जुलाई 2026 में AICC का 111वां सदस्य देश कौन बना, और उसका सही जवाब है मॉरिशस। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दर्शक श्रोताओं के नाम हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, रवि मौर्य सेमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंतीबाई, गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से श्यामाबाई रायकवा। आप सभी श्रोताओं को विनर श्रोताओं के विनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का सवाल।
2: और हमारा आज का सवाल है, भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज फेडरेटेड खिलाड़ी कौन है। सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ, भारत के सबसे पहले कम उम्र के शतरंज फेडरेटेड खिलाड़ी कौन है। और इसका जवाब देने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी youthairvaranasi पर या हमारा ईमेल पता youthairvns@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। तब तक के लिए हमारे आज के विजेताओं के नाम प्रस्तुत है ये गीत।

0: की पहचान है। नकारात्मकता हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
1: मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारा उत्साह बढ़ाएं, ना कि हर समय हमारी कमियां गिनाएं।
0: बिल्कुल, अच्छी संगति का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
1: मैं अब सोशल मीडिया पर भी कम कम समय बिताती हूँ। वहाँ कई बार बेवजह की बातें और तुलना मन को नकारात्मक बना देती हैं।
0: हाँ, सोशल मीडिया का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। हमें वही देखना चाहिए जिससे कुछ नया सीखने को मिले और मन प्रसन्न रहे।
1: जब कभी मेरा मन उदास होता है तो मैं अपनी पसंद की संगीत सुन लेती हूँ, या कोई किताब पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं परिवार के साथ अपना समय बिताती हूँ।
0: बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी आदत है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब हमें आगे बढ़ने का इशारा कर रही हैं और आज के इस सफर को यहीं थामने का वक्त भी आ गया है। लेकिन जाने से पहले इस खूबसूरत शाम को और हसीन बनाने के लिए छोड़ जाते हैं आपको इस वादे के साथ कि अगले दिन हम फिर मिलेंगे कुछ नए साथियों के साथ, नए बातों के साथ, नए गानों के साथ और ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच अपनाते रहिए और सुनते रहिए हम सभी दोस्त हमें अपनी दोस्त आराध्या और शिची को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जाते जाते आपके लिए ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गए। सत्र के पहला दिन में संसद के दोनों सदनों का कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पर विपक्ष के हंगामा के नाते लगातार बाधित रहा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले संवाददाता लोगों से बतियावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने की, चाहे मॉनसून हो के आज चाहे मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वो ढेर उत्पादक सिद्ध होला।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की और देशवासी गर्व से भर जाए, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष में हो, भारत के लिए गर्व से चल रहे हैं।
1: श्री मोदी सजो राजनीतिक दलन से सत्र के दौरान सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में 542 करोड़ रुपया से बेसी के लागत वाली 82 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री विकास के साथ विरासत के संरक्षण के

0: आदि सरकार को प्राथमिकता बतौलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। यूपी का नौजवान, यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर जाता है और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बाराबंकी से हूँ, मैं अयोध्या से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, अगर आप कह देंगे सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है।
0: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री यह कहना कि बाराबंकी के स्टेट कैपिटल रीजन SSCR के रूप में विकसित कर जा रहा बा, जेकरे एक ओर लखनऊ बा और दूसर की ओर अयोध्या। वहां के कहने की जवन विकास लखनऊ आ अयोध्या ले पहुंची ओकर लाभ बाराबंकियों के निश्चित तौर पर मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की बाती साझा करत नौजवानों से कम एगो कौशल सीख लेकर अपील कैले हवे।
2: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प लेकर कम से कम एक कौशल सीख कर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश
0: को अहम बैठक बुलावल गई बा। एगो रिपोर्ट।
3: अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले के बीच अब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम न्यासी बैठक बुलाई गई है। बैठक के एजेंडे में SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा और ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है। वहीं दूसरी ओर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट के पुनर्गठन, वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व और मंदिर की पूजा व्यवस्था रामानंदी परंपरा के अनुसार संचालित करने समेत कई मांगे उठाई है। तन्ना सोनी, आकाशवाणी समाचार अयोध्या।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कई गो और जिलों में बरखा से जनजीवन प्रभावित भइल हो। एगो रिपोर्ट।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तो बीचे खराब मौसम के देखत उत्तराखंड में सुरक्षा के नाते एहतियाती तौर पर आज 4 धाम जतरा कुछ समय खातिर रोक दिया गया बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
5: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गिटार वादन, कलाकार होंगे सिद्धार्थ बनर्जी। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में धान की फसल में खर पतवार प्रबंधन विषय पर डॉक्टर देव नारायण यादव से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा किसान भाई हंसराज प्रसाद और साथी के गाए लोकगीत भी सुन सकेंगे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर कार्यक्रम रसरंग में और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रस माधुरी में आप सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब सुनिए कल यानी दिनांक 21 जुलाई सन 2026 दिन मंगलवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले

करेंगे। उर्दू कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार होंगे पंडित रविशंकर, और दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे पंडित पूरण महाराज का एकल तबला वादन।

0: देंगे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:00, शाम 7:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, साथ ही युवा साथी गीत संगीत का आनंद ले सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म यार मेरा से, आवाज मन्ना डे की, गीतकार नीरज और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

0: देंगे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:00, शाम 7:15 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, साथ ही युवा साथी गीत संगीत का आनंद ले सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म यार मेरा से, आवाज मन्ना डे की, गीतकार नीरज और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म हरिदर्शन से, आवाजें सुषमा श्रेष्ठ, कमल बरोट और हेमलता की, गीतकार प्रदीप और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य प्रथम दिवसे नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अधिकृत्य विपक्षी सदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशील सत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौ राजधान्यां स्वस्य मोल्दोवा समकक्षया राष्ट्रपतिना मया संधु इत्यनया सह मण्डलस्तरीय वार्तां व्यदधात्। होर्मुज क्षेत्रे उत्पातस्य निरंतर वर्धनेन समीपस्थ देशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिका देशयोः मध्ये अद्य नवम दिवसेपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरंतर कोलाहलेन स्थगितम्। लोकसभायाः कार्याचरणारम्भे आदौ सदनेन षण्णां पूर्वसदस्यानां निधने सहैव कतर देशस्य अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधने शोकसंतप्त श्रद्धांजलिः समर्पितः। अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ न्यगादीत् यत् शेख हमद महोदयः आधुनिक कतर देशस्य आधारशिलां स्थापयितुं सहैव भारत कतर संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं महतीं भूमिकां न्यवहत्।
2: महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: प्रश्नकालारम्भे कांग्रेस समाजवादी प्रभृतयः विपक्षी दलीयाः नीट विषयमधिकृत्य उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन्, येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः। राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टम् दृष्टिम् अगात्। आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः शपथम् अगृह्णन्। सदनं च पूर्वसदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खर्गे नीट विषयम् उत्थापयितुं प्रायतत, किन्तु निरन्तर कोलाहलेन सदनं बहुवारं स्थगितम्। उपसभापतिः हरिवंशः सूचीबद्धकार्याणि सञ्चालयितुं प्रायतत, किन्तु अविरत

पति। सामरिक दृष्ट्या अति महत्वपूर्णे होर्मुज जलसंधौ उत्तरोत्तरं प्रवर्धमाने संघर्षावधौ अद्य अविरतं नवम दिवसेपि अमेरिका ईरान देशयोः परस्परं भीषण सैन्य प्रहाराः अभवन्। अमेरिकी सैन्यैः ईरानस्य होर्मुज नगरं लक्ष्यीकृत्य अभवत्। अपरत्

0: अभवत्। अपरत्र जॉर्डन देशस्य सर्वकारीय प्रसारण संस्थया सामाजिकांतरजालीय पटले निवेदितं यत् तस्य देशस्य वायु प्रतिरक्षा प्रणाल्या ईरान देशात् जॉर्डन भूभागं प्रति प्रक्षिप्तानि त्रीणि क्षेपणास्त्राणि तथैव विनाशितानि। चतुर्थं क्षेपणास्त्रं जॉर्डन देशस्य दक्षिण दूरस्थ क्षेत्रे पतितं, येन कापि जनधनहानिः न जाता। समाचार माध्यमानुसारं एतानि क्षेपणास्त्राणि जॉर्डन देशस्य दक्षिणतटीय नगरे अकाबा इत्यत्र स्थितान् अमेरिकी विमानस्थानकान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षिप्तानि आसन्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 और 14 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम
1: राम राम हो सत्तू भैया। का हाल चाल है खेती किसानी का? हो
0: भैया कुल खेती किसानी का तो हालचाल ठीक है। कुछ संडा लगेले रहनी तो भाई संडा रोपा भी गईल। अब बेहन भी डल रहनी लगभग लगभग वो रोपाई गईल बा। अब बाकी अब वह घरे दुआरे जो अगले बगल उच्च भूमि है ओपन साग सब्जी का खेती कैले हैं तो कुछ नैनुआ लगेले रहनी। आज ओके तनी हटैनी है भाई। अब ओकर ओहो को समय हो गेल ला, बहुत खियलस और फिर नया सब्जी लगी। तू कह का कुल हालचाल है अपने खेती?
1: भैया देखा बात एकदम निमन कहला है। धीरे धीरे जो न भाई नेनुआ के बात कहला है ना, तब धीरे धीरे ओकर देखा सीजन गया। अब नए सिरे से आदमी खेती में काम करे चालू करत है।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे जो देखा भाई एक न भूलक चाहिए, धान जे छूटल छाटल रहल जोन किसान मन ही अपन छूटल रहल, अब वो रोप वोप के ना देखा क्या देखा खाली हो गल हुआ।
0: भाई देख खाली हो ही जाए के पड़ी। हर चीज का एगो समय होला और हर खेती का समय निर्धारित कर गेल है तो लोग धीरे धीरे कहल जाओ कि रोपनी अब अपन अब अंतिम पड़ाव पर चल गेल है। आ लोग देख कहल जाओ कि हर किस्म का अब धान उगाओ तो ना हर किस्म का इतना तकनीक हो गई है कि पता चल जाता कि कितना दिन पहले के रोपे के है, कितना दिन पर एमे खाद बिया डाले के है, कैसे एकर रख रखाव करे के है। हम कहते हैं कि भाई अब इतना 21वीं सदी में जियत है जा और इतनी तकनीक लेके ना चलल जा तो भाई अब यहू पर तो शक होता ना कि भाई जानकारी तो रखें कि पड़ी हर चीज का, कहे से कि अब हर चीज में कहल जो कि टेक्नोलॉजी आ गई है।
1: सत्तू भैया देखा बात एकदम सही कहला है। देखा भाई हमारा देखे दिन वाला पहले का याद जवन है ना,
0: का हो
1: पहले ना देखा जैसे कोनो रोग भी याद जब होके आदमी की तो जाना तो हुआ ना, जैसे कि पहले गाड़ी मोटर ना रहे
0: बिल्कुल
1: तो आदमी जो खटिया होला ना, खटिया पे आदमी मरीज के सुता के जवन है ना हॉस्पिटल लेके जा। कभी कभी ना समय के इतना दिक्कत हो ना, मरीज के साथ घटना भी हो जा।
0: बिल्कुल भाई घटना हो जा। ई जान लगी दीना भैया जोन पहले का बाप दद्दा का जोन जमाना रहे ना भाई, लोग कहे ना बतावे ना कि भाई जोन तू बात कर रहा कि घरे में बर बीमार या बूढ़ पुरानी लोगों के कोनो बीमारी हो जा तो भाई ले जाए में बड़ा समस्या होके बड़ा दिक्कत होके, तो ये बात तो एकदम सही कह रहा। और ई जान ल कि अगर डॉक्टर साहब के यहाँ खबर भी करे के होके ना कि भाई डॉक्टर साहब के ही बुला लिया जाए तो उन्हों के आवे में बड़ा समय रहे, कहे से कि उतना गाड़ी मोटर ना चलना, उतना गाड़ी मोटर रहबो ना कहीं ना भाई डॉक्टर साहब साइकिल से आवस चाहे एका गाड़ी या घोड़ा गाड़ी रहे, यही कुल से चले लोग आवे लोग तो भाई अब वह में समय लगे। और धीरे धीरे लोग बहुत लोग एगो खबर लेके जा उनके बुलावे खातिर तो जहू में समय उनके अहू में समय तो देखो ऐसा कुल में भाई घटना हो ही जा। लेकिन धीरे धीरे भाई अब कहल जाओ कि जमाना बदलत गईल, दशक बदलत गईल, नया नया कुल टेक्नोलॉजी आ गई, नया नया

0: कुल काम करे के मशीन के तरीका आ गई, तो तरीका के संगे संगे हमनो में बदलाव भइल। भाई देखा अब तो घरे बैठल बैठल बड़ा मोबाइले से खोल दिया, सामने से डॉक्टर साहब देख लिया ना, तो क्या दवाई लिख दिया ना, आ तू ठीक भी हो गई ल। तो देखो धीरे धीरे जमाना कहल जाओ कि बदलत रहेला, और पीढ़ी दर पीढ़ी आवे वाले भी समय में हो सके यहू से और अच्छा व्यवस्था हो जाए।
1: नहीं, बात एकदम सही कहला। देखा सत्तू भैया, पहले जो ना जब आदमी की दिक्कत हो, और अब में देखा जैसे 2 नंबर मिली ला और तुरंत एम्बुलेंस घरे पहुंच गए।
0: एकदम दुआरी पर भैया पहुंच जात है, तो के ले जात है, तुहार इलाज बढ़िया से ढंग से करावत है। तू अगर प्राथमिक कहल जो कि अस्पताल पर जाए चाहत रहे तो प्राथमिक अस्पताल पर ले जात है, फिर अगर जिला पर जाए चाहत रहे तो जिला पर ले जात है। देखो हर चीज का सुविधा हो गई है, और संगे संगे ना दीना भैया सरकार भी हमने के सुविधा दे जाती है।
1: कहे नहीं भाई, सुविधा
0: और
1: में पहले जो ना सत्तू भैया सरकार इतनी सुविधा दे दिले है लोगन के, जैसे कि देखा भाई किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना, आवास योजना, यही में ना सत्तू भैया एगो हमने की योजना हला आयुष्मान भारत योजना।
0: बिल्कुल भैया देखा आयुष्मान भारत योजना के बात कैला है ना, तो भाई देखा ये तो बहुत बढ़िया, और हमने के कहल जाओ कि गरीब आदमी बदे सोने पर सुहागा
1: सोने पर
0: है,
1: सुहागा है, एकदम गरीबन बदे रामबाण हो।
0: बिल्कुल रामबाण है। और इतने नहीं ये जान ला कि कोई जीवन दायनी है भाई, जोन परिवार में अगर केहू रोग व्याध में फंस जा, क्योंकि घरे में रोग व्याध हो जा, तो ये जान ला कि भाई ओकर आर्थिक स्थिति पूरा उलट पुलट जाओ दीना भैया, यहाँ तक कि गहना गुड़िया सब बेचे के पड़ जाओ, हाँ कुछ जमीन जायदाद भी हटावे के पड़े भाई, कहे से कि उनके सही भी तो करे के
1: सही
0: है,
1: की भी।
0: तो ये वजह से बड़ा नुकसान होके। तो देखो सरकार भी एकरी बदे ना आयुष्मान भारत योजना चलेले है, एकरी तहत हर परिवार के जे लाभार्थी है ये योजना के लेवे बदे, तो ओके भाई 1 साल में मतलब प्रति वर्ष 5 लाख का अपनी ओर से सहायता करेले, 5 लाख का मुफ्त इलाज करावेले। और एकर कुछ करे के ना है दीना भैया, हाँ गईल और जोन एकर पोर्टल बनल है, वो पोर्टल पर जाके जैसे आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी पोर्टल है, ऊपर जाके ऑनलाइन कर दिया है, चाहे उसे भी जे भी जुड़ल जानकारी प्रदान करत हो उसे जाके अपने ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर या चाहे जिला स्तर पर जाके वो कर्मचारी से मिले के है, अपने परिवार का स्थिति या जोन भी तो हर कागज है पत्र है, जैसे कि ज्यादातर

0: गईल और जोन एकर पोर्टल बनल है वो पोर्टल पर जाके जैसे आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी पोर्टल है ऊपर जाके ऑनलाइन कर दिया ला, चाहे उससे भी जे भी जुड़ल जानकारी प्रदान करत हो उसे जाके अपने ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर या चाहे जिला स्तर पर जाके वो कर्मचारी से मिले के है अपने परिवार का स्थिति या जो भी तो हर कागज है पत्र है जैसे कि ज्यादातर जे लोग गरीब हों उनके बदे ही योजना है तो ओके देखब न तो ऊ तो के बताई लो कि हे विधि से के बनावा और के कुछ करे के ना है एगो तोहर कार्ड जैसन कार्ड बन जाई ओके स्मार्ट कार्ड लोग कहत हुआ ओके लेके जेब तो ऊ चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो वहाँ वो कार्ड के देखेब तो वो कार्ड के माध्यम से तोहर प्रति वर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज हुई।
1: देखा सत्तू भैया इतना नीमन बात कहल है कि किसान भाई लोग का भी जीव जन एकदम हल्लुक हो गई सुन के। अच्छा एक लाइन और सोचा, जैसे कि गरीबी रेखा से आदमी पलल हो, परिवार बहुत गरीब हो, पैसा कौड़ी नहीं बा, तत्काल कोनो बीमारी आगल ओके उपचार करावे दे पहले कोनो सिस्टम ना रहे।
0: बिल्कुल
1: हाँ आदमी गल्ला गुच्छी

0: हज यात्रियों का चयन डिजिटल रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया से 30 जुलाई 2026 को हज हाउस मुंबई में किया जाएगा। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में देशभर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट्स पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिसमें कि उनको डिप्टी एसपी और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
0: यूपी T20 लीग सीजन 4 का आयोजन 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज ग्रेटर नोएडा में CBSE नॉर्थ जोन की लॉन टेनिस और शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

0: कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म चोरिनी से। किशोर कुमार की आवाज़, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: हाय,

आसमां के सितारों में लहरा रही थी। ये जलवा ये नखरा ये जलवा।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से, आवाज किशोर कुमार की, गीतकार वर्मा मलिक और संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत है मजरू सुल्तानपुरी का। संगीत से संवारा है आर डी वर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म द ट्रेन से, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और आर डी वर्मन का संगीत।

नक्सलियालपुरी की शब्द रचना और जयदेव के संगीत में किशोर कुमार की आवाज़ से मान जाइए फिल्म का अभी आप ये गीत सुन रहे थे। इसी गीत के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिनभर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना और तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का

हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि NCS परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र MCC स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज

क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास, देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जे राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पूनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और H. हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET UG 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ

करा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही

5000 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 और 5 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसमाधुरी। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म दो बदन से, लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल और रवि का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म जाने अनजाने से। किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी का ये गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म खामोशी से, लता मंगेशकर की आवाज़, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत।

बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है।

0: रियासी एंड उधमपुर हैव बीन रीओपन्ड एंड वर्क टू रिस्टोर वाटर सप्लाईज इन सेवरल एरियाज इज ऑनगोइंग. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर टिल जुलाई 23, प्रॉम्प्टिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू इशू एडवाइजरीज अर्जिंग पीपल टू रिमेन
1: ऑफ द स्टेट. रेन एंड लैंडस्लाइड

0: है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल की आमेजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि इथेनॉल की आमेजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमेजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मियारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू के कई शोबों में इश्तराक को वसूल देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: आई एम ग्रेटली एनकरेज्ड बाय द ग्रोइंग कोऑपरेशन। देयर इज इमेंस पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स सच एज डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांसमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ मोल्डोवा इन एनर्जी सेक्टर, इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन।
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुव्वत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: We remain committed to fostering a transparent, predictable, and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in India. Your enterprise, vision, and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मस्नूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाऊ में स्टेफन शेल माहरे शीस फंट यादगार पर गुलाए अकीदत नजर किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासर राजौरी और पुंछ जिलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेरंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ दोनों सरहदी जिलों में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुंबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आज की शदीद बारिश ने पुंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाई को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में आज देर रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थीं। इस वजह से तलाश और बचाव की कार्रवाई में सख्त मुश्किलात पेश आईं। मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। NDRF, SDRF, जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज समेत हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की अहम सड़कें फिर से खोल दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में पानी सप्लाई की

0: बहाली का काम जारी है। महकमे मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके मद्देनजर जिला इंतजामिया ने लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी इलाकों में भी अगले दो दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार जजायर में भी कल गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में आज हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। महकमा मौसमियात ने कल दिल्ली में आम तौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक कल राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 से 33 डिग्री जबकि कम से कम दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टारमर के इस्तीफा देने के बाद शाह चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया, जिसके बाद वो बाजाबता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नहैम को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात, आलमी सतह पर जायजे और टेक्नोलॉजी की मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने न सिर्फ कौमी सतह पर अपने तयशुदा अहदाफ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया बल्कि आबोहवा की तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए दीगर शोबों में भी अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमेटिक्स के अलावा प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मजामीन में गैर मामूली जानकारी फराहम की है, जो कि एक अजीम कारनामा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेब्स OTT और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 और 51 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और

0: के प्यार करते हैं कि प्यार करना गुनाह हो जैसे।
1: चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है।
0: यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम।

आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे। आदमी का है आजकल ये हाल, एक सहमी सी चाह हो जैसे।

न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। न जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूँ बहुत कुछ वफा के बारे में। और सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगे, जिन्हें खबर ही नहीं कुछ वफा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंजुमन यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज के कलाकार थे मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल, अल्ताफ रजा, फाल्गुनी पाठक और सोनू निगम। यही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही देर में आप संसद की रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं

0: बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे व अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें नए सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास, गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी दो बार उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व दो कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा

0: के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है। घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है। और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है।
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड़ संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे। मोदी जी ने प्राण प्रण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, ज्ञान सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी ये सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन कराया जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
3: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तथ्य ले रहना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर यही है।

0: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:13 और 14 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत है फिल्म आरती से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के गीत और रोशन का संगीत।
1: ना भंवरा ना कोई गुल, अकेला हूँ मैं तेरा बुलबुल।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अमर से। अमर फिल्म में शकील बदायूं की इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मंजिल से, आवाज मन्ना डे का, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एसडी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म शर्त से, आवाज हेमंत कुमार की, एसएस बिहारी के बोल और हेमंत कुमार का संगीत।

0: कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म अप्रैल फूल से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: की खाक मोहब्बत

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दो कलियां से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़, साहिर लुधियानवी की बोल और रवि का संगीत।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 10:30:17 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सिद्धार्थ बनर्जी का गिटार पर बजाया राग बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अमित ईश्वर।

AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।